ठाकुर मेरे कित मुख तुसा लागी, गुण अवगुण मेरा किशना बिचारिया, बक्सली आखे नमागी, नौंद पाई वजी वधाई, वाजे अनगल तूरे, कहो नानक मैं वर कर पाया, मेरे लाथे जी सगलब सूरे, सलोक क्या सुनें दो कूड़, वंजन पवन चुलारिया, नानक सुनियर ते प्रवान, जो सुनें दे सच तनी, शंत तिन कोल कुमाई, जिन प्रसरमणी सुनिया राम, से सह सुहेले, जिन हर गरसना पणिया राम, से सह सुहेले गुणे अमूल्य, जगत उधारने आए, पै बोच सागर प्र

मैं फिर सचड़ा गए सदा नाले जिन्नी चलन सही जानिया सदगुर सेवे नाम संभाले सदा नाम संभाले सदगुर है नाले सदगुर सेव सुख पाया सब दे काल मार सच उर धार फिर आवन जान न हो।

प्रसन्न कोई न किसी जेह अंडज जेरज उत्पुज सेतज तेरे की तेजनता। एक पुरब मैं तेरा देखिया तू सबना महे रवंता तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया मैं मूर्ख किस दीजै परमत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै। सोरठ महला पहला हौ पापी पतत परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी अमृत चाख परम रस राते ठाकुर शरण तुम्हारी। करता तू मैं मान निमाने मान महत नाम तन पल्लै साचे शब्द समाने रखाओ। तू पूरा हम ऊरे होचे तू गौरा हम हौरे तुझ ही मन राते अहनस प्रभाते हरसना जाप मन रे। तुम साचे हम तुम ही राचे शब्द पेड़ फुन साचे अहनस नाम रते से सूचे मर जन में से काचे। अवर ना दिसे किस साला ही किसे शरीक न कोई परमत नानक दासन दासा गुरमत जान्या सोई। सोरठ महला पहला अलख अपार अगम अगोचर नाथ से काल न कर्मा जात जात अजोनी संपो नाथ से पाओ न परमा साचे सचियार मिटो कुर्बान नाथ से रूप वर्ण नहीं रेखिया साचे शब्द निशान रखाओ। नाथ से मात पिता सुध बंधव नाथ से काम न नारी अकोल नरंजन अपर परंपर सगली ज्योत तुम्हारी। धड़कड़ अंतर ब्रह्म लुकाया धड़कड़ ज्योत सबाई बजर कपाट मुक्ते गुरमति निर्भय ताड़ी लाई। जंत उपाय काल सिर जनता वस गत जुगत सुबाई सदगुर से पदार्थ पावे टूटे शब्द कमाई सूचे पांडे साच समावे विरले।

प्यार राखो पैज हमारी रखाओ। शब्द सलाई सदा हो जीवा गुरमती पौ भागा, मेरा प्रसाचा अत सवाल्यो गुरसे व्याचित लागा। साचा शब्द सची सज बाणी दो जन अन दिन जागा, महा गंभीर सदा सुखदाता इसका अंत न पाया। पूरे गुर की सेवा कीनी अचिंत हर मन वसाया, मन तन निर्मल सदा सुख अंतर विचों परम चुकाया।

क्रोध अहंकारा। सदा हजूर कविया सब ठाई हृदय नाम अपारा। जो जुग बाणी शब्द पछाणी नाओ मीठा मने प्यारा। सदगुर सेव जे नाम पछाता सफल जन्म जग आया। हार चाख सदा मन तृप्तिया गुण गावे गुणी अगाया। कमल प्रगा सदा रंग राता अनखा शब्द बजाया। तन मन निर्मल निर्मल बाणी सच्चे सच समाया। राम नाम की गत कोई न बूझे गुरमत हृदय समाई। गुरमुख होवे सो मग पछाणे हर रस रस नरसाई। जब तब संजम सब गुर ते होवे हृदय नाम साई। नानक नाम समाले से जन सोहन बर साचे पद पाई। सोरठ महला तीजा दो तुके सतगुर मिले उल्टी पई भाई। जी

संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सु वडभागी, जिसनु आप मिलाए। हारस पीजन सदा त्रिवतासे, विचो आप गवाए। यो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाए। नानक सतगुर मिले ता

सब जग मछली घर आपे, आप पुल न पुल ही प्यारा, अवर न दूजा जापे, आपे सिन्नी नाद है प्यारा, तुने आप जाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तवतापे, आपे सदगुर आप है चेला, उपदेश करे प्रभ आपे, आपे नाउज पाएंदा प्यारा, आपे ही जप जापे, आपे अमृत आप है प्यारा, आपे ही रस आपे, आपे आप सलांदा प्यारा, जन नानक हारस थापे, सोरठ महला चौथा, आपे कंडा आप तराजी,

तुम सबसा जे सा जनेवा जे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुनियारे गुण नहीं कोई तुम दान दे मेहरबाना तुम करो भला हम पलो न जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विधाते तुम राखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम ए हवाला राग संतन कै पाछै।

सुगदाता गुर पूरे दिया उपदेशा तुम्हें संग पराता रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अवमहाना ता मैं सुख नहीं पाई है हो रेन तू सगल की मेरे मान तो अनद मंगल सुख पाई है काल न पाने अंतर विध जान ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ओ मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा ना वर्तन ना मुवा लेवा नाम नानक प्राण अधारा सोरठ महला पंजवा मृतक को पायो तन सासा विशिरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पै स्रोते हर नामा मोह गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकि कीमत कहन न जाई हरहाओ दू सो का टायो डेरा अंत मंगल बिसरामा मन बांचित फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा ईहा सुख आगे मुख उजल मिट गए आवन जाने निरपो पै हृदय ना मसिया अपने सदगुर कै मन पाने उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द परम भागा कौ नानक ताके पूर करम्मा जाका गुरचरनी मन लागा सोरठ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा ते आई है सिमरहो हर हर नाम परानी बिरसे काची दे अग्ञानी हरहाओ मृत न अर स्वप्न मनोरता की कछ न वडाई आराम भजन बिन काम न आवस संग न काहू जाई हो करत बिखाए अवरदा जी को काम न कीना धावत धावत न तृपतासिया आराम नाम नहीं चीना साध विकार विखे रस मातो असंख खते कर फेरे नानक की प्रापाए बेनंती काटो अवगुण मेरे सोरठ महला पंजवा गुण गावो पूर्ण अवनासी काम क्रोध बिख जारे महाबिघम अगन को सागर साधु संग उधारे।

जो करे सोई सोई जाने, रहे न कछुए शानी रखाओ। जे बा स्वाद लोभ मद मातो उपजे अनक बेकारा, बहु जून परम दुख पाया होमे बंधन के पारा। देख किवाड़ अनक पड़ दे मह, पर दारा संग फाक है, चित्र गुप्त जब लेखा मांग है, तब कौन पड़दा तेरा ठाक है। दीन दयाल पूर्ण दुख पंजन, तुम बिन ओट न काई, काढ़ लियो संसार सागर में, नानक प्रभ शरणाई। सोरठ महला पंजवा, पार ब्रह्म हुआ सखाई, कथा कीर्तन सुखदाई, गुरपूरे की बाणी, जपंद करो नित प्राणी, हर साचा सिमर हो पाई। साध संग सदा सो पाई है, हर बिसरना कब हो जाई। हरहाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे, जिसनु कर्म प्राप्त होवे, तो जन निर्मल जीवे। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, गुर चरणी मन लागा, गुण गावत अजुत अविनाशी, आन दिन हर अंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए, हर की कड़ा सोहेली, आद अंत मद नानक को, तो प्रभ होवा बेली। सोरठ महला पंजवा, पंच पदा, बिन से मोह मेरा अर तेरा, बिन से अपनी तारी, संतो या बताव हो कारी, जित हो में गर्भ निवारी रखाओ। सर्व पूत पार ब्रह्म कर मान्या, होवा सगल रे नारी, देखो प्रभु अपने संगे, चूके पीत परमारी। औखद नाम निर्मल जल अमृत, पाइये गुरु द्वारी, कहो नानक जिस मस्तक लिखया, तिस गुर मिले रोग बेदारी। सोर

ए पीतर ते इनको डारो, अपन निकट बुलावो, अपनी विद आप जनावो, हर जन मंगल गावो रखाओ। बिसर नाही कहू ही एते, हे विद मन में पावो, गुरपूरा फेटू वड पागी, जन नानकते ना तावो। सोरठ महला पंजवां, जाके सिमरन सब कुछ पाइये, विरती काल न जाई, ते प्रत्याग अवर कतरा चो, जो समय रहा सुमाई। हर घर सिमरू संत गोपाला, सा संग मिल नाम ते आवो, पूर्ण होवे काला रखाओ। सार संभाले नित प्रतपाले, प्रेम सहित गल लावे, कौ नान प्र तुमरे बिसरत जगत।

बात सवारी, प्रभ अपना बिरद समारिया, हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया, गुर का सद पयो साखी, तिन सगली लाज राखी, बोलाया बोली तेरा, तू साहिब गुणी गहेरा, जप नानक नाम सा साखी, अपने दास की पैज राखी, चोरठ महला पंजवा, विधकर्ता पुरख खलोआ, वाल ना विंगा होआ, मज्जन गुर अंधा रासे, जप हर हर किल खनासे।

पंजवा पार ब्रह्म निभागी पूरी ताई बात न रहिया उरी गुर चरण लाए निस्तारे हर घर नाम सुमारे अपने दास का सदा रखवाला कर कृपा अपने कर राखे मात पिता जो पाला रखाओ वड़भागी सतगुर पाया जिन जमका पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जब जी वे से वड़भागा हर अमृत बाणी गावे साधा की तूरी नहावे अपना नाम आपे दिया प्रवकरण हार रख लिया हार दर्शन प्राण अधारा क्यों पूर्ण विवन विचारा हर कृपा अंतर जामी दास नानक शरण स्वामी सोरठ महला पनवा गुर पूरे चरणी लाया हर संग सहाई पाया जय जय गीता सुहेले हर कृपा प्रा मेले हर गुण गावो सदा सुपाई मन चिंदे सगले वल पावो जी कै संग सहाई रखाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जनारे नारा पतत पुनीत कर लीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतपाला सा जी संग रखवाला हर दिन रैन कीर्तन गाइये बौड़ न जोनी पाइये जे देवै पुरख विधाता हर दिन ही जाता जम कंकर नेड़ न आया सुख नानक सरणी पाया सोरठ महला पंजवा गुरपूरे कीती पूरी प्रव रव रया पार पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म मिट्टो कुरबाना गुर के चरण कवल तारे बिघन ना लागे तिलका कोई कार्ज सगल सवारे हरहाओ मिल साधु दुरमत खोए पदत पुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सबला थे पाप कमाते गुण गोविंद नित गाईये सा संग मिल त्याईये मन बांछित फल पाए गुर पूरा हृदय ते आए गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दैद सदन मेघ कटा काट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैने फिर परदेश सिधायो हुण नहीं संदेश रोम आयो ए कोसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रखाओ क्यों बिसरे यो लाल प्यारो सर्व गुणा सुखदायो मंदिर चर के पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हो पीत पयो है बीचो सुनत दिस निकटायो।

पूर्ण पैज रखाई, सगले दुख मिटाई, सुख पुंचो मेरे पाई। चोरठ महला पनवा, सुनो बेनंती ठाकुर मेरे जी जंत तेरे थारे, राख पैज नाम अपने की करन करा मनहारे। प्रभ जीओ खुशमाना कर प्यारे, बुरे पले हम थारे रहाओ। सुनी पुकार सुमरस।

संतन के कारज सगल सवारे, दीन दयाल किरपाल किरपा निध, पूर्ण खसम हमारे रघाव। आओ बैठ आदर सवताई, ऊ न कतहू बाता, भग सिर पाओ जीव जने अपने।

तार सगल जगत है जैसे सुबना बिनसद लगत न बार रखाओ बारू पीत बनाई राजपत रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के पुरजोखा गवार अजहू समझ अज बिगड़ो नाहिन ताज ले नाम मुरार कहो नानक रिज मत साधन कहो वाख्यो तोय पुकार सोरठ महला नावा ए जग मीत ना देखियो कोई सागर जगत अपने सुख लागे हो दुख में संग न होई रहा दारा मीत पूसन बंदी फगरे तन स्यों लागे जल ही निर तन देखियो नरको संग शाड़ सा भाग।

दो तुकी तू गुण दातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होए हम पराधी निर्गुणे पाई तुझ ही ते गुण सोए मेरे प्रीतमा तू करता कर वेख हो पापी पाखंडिया पाई मन तन नाम सेख रहा विख माया चित मोया पाई चितराई पद खोए चित में ठाकुर सच बसे पाई ये गुर ज्ञान सुमोए रूड़ो रूड़ो आखिए पाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर सुम बैरागिए पाई दार कर साच अपूल पाताली आकाश तू पाई कर कर तू गुण ज्ञान गुर विले सुख पाया पाई चूका मनो गुमान जल मल काया मंजगे पाई ही मैला तन होय ज्ञान महार सुनाई गे पाई मन तन निर्मल होय देवी देवा पूजिए पाई क्या मांगो क्या देहे पाहन नीर पखालिए पाई जल मैं बूढ़े तेहे गुर बिन अलख न रखिए पाई जब बूढ़े पद खोए मेरे ठाकुर हाथ वडाइया पाई जय पावे तय दे बैयर बोले मीठली पाई साच कहे पिर पाए फिर गए बेदी सच वसी पाई अद करही हरनाए सबको आखे अपना पाई गुरते बुझे सुजान जो बीदे से उबरे पाई शब्द सच्चा निशान ईदन अदकस के लिए पाई पाव करन चक पाए खेन पल नाम हृदय बसे पाई नानक मिलन सुपाय सोरठ महला तीजा कर पहला ते तुकी।

रहे नगन फिरे हो बनमाही तड़ तीर्थ सब धरती प्रम्यो दुबदा छुटके नाही मन कामना तीर्थ जाय बस्यो सिर करवत तराए मन की मैल ना उतरे ए बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी गैबर गैबर बहुबद दान दातारा अन बस्त्र पूम बहु अर्पे न मिल गए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन डंडौत खड़ कर मारत रहता हौ करत बंधन में परया न मिल गए ए जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर रहे आ वडी आर जा फिर जन्म हर सो संग न गया राज लीला राजन की रचना करया हुक्म अपारा सेज सोने चंदन चोआ नरक कोर का द्वारा हर कीर्त साध संगत है सिर कर मन कह कर्मा।

की अब बेगल कहन न जाई। हमारा परम गया पहु भागा जब राम नाम चित लागा रहाओ। बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमासे आई। बाजीगर स्वांग सकेला आपने रंग रवे अकेला। कतनी कह परम न जाई सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई ताके हिरदे रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी। कहे कबीर रंग राता मिलियो जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा समुंद बलोमन को माटा। ताकी हो बलोमन हारी क्यों मेटैगो शास तुहारी। चेरी तू राम न करस पतारा जग जीवन प्राण।

राजा राम को रास जे रस अनस बिसर जाही रहाओ। जान अजान पै हम बावर सोच असोच दिवस जाही। इंद्री सबल निबर विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं। तैयत आन अचरित अनकश समझना परे अपर माया।

सास मास तब जियो तुम्हारा तुम्हें करा प्यारा नानक साहिब एव कहत है सच्चे परवद गारा जे तू किसे ना देही मेरे साहिबा क्या को कड्डे गहना नानक बिन वै सोग छिपाईए पुरब लिखे का लहना नाम खसम का चेतन किया कपटी कपट कमाना जाम द्वार जा पड़ चलाया ता चलदा पछताना जब लग दुनिया रही गई नानक किस सुनिए किस कहिए पाल रहे हम रहन न पाया जीव ते हम मर रही है तनासरी मोहल्ला पहला कर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए तप हे आओ जीड़ा बिल लाए फिर जसवारे सचा सोए तिस विसरे चंगा क्यों होए हिकमत हुक्म न पाया जाए क्यों कर साच मिलो मेरी माए रखाओ वखर नाम देखन कोई जाए ना को चाखे ना को खाए लोग बतीने ना पत होए ता पत रह आराखे जा सोए जै देखा तै रहा समाए तुद बिन दूजी ना ही जाए जे को करे कीते क्या होए जिसनु बगसे साचा सोए हुन उठ चलना मोत के ताल क्या मोह देसा गुण नहीं नाल जैसी नदर करे तैसा होए बिन नदरी नानक नहीं कोए तनासरी मोहल्ला तीजा नदर करे ता सिमरिया जाए आत्मा द्रवे रहे लिवलाए आत्मा प्रात्मा एको करे अंतर की दुबदा अंतर मरे गुर प्रसादी पाया जाए हर सुचित लागे तिर काल ना खाए रहाओ सच सिमरे होवे प्रगास ताते बिखिया महे उदास सतगुर की ऐसी वडियाई पुत्र कलतर विचे गद पाई ऐसी सेक सेवा करे जिसका जीव तस आगे तरे साहिब पावे सो परवान सो सेवक दरगह पावे मान सतगुर की मूर्त हृदय वसाए जो इच्छा सोई फल पाए साचा साहिब कृपा करे सो सेवक जमते कैसा डरे पंत नानक करे विचार साची बाणी सो तरे प्यार ताको पावे मुख द्वार जब तब सब यो सब जगह सार तनासरी मोहल्ला पहला जियो तब है बारो बार तब तब खावे बहुत बेकार जै तन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी विल लाए बहुता बोलन चखण होए बिन बोले जाने सब सोए रहाओ जिन कन कीते अखी नाक जिन जेवा दित्ती बोले तात जिन मन राख्या अग्नि पाए वाजे पावन आखे सब जाए जेता मो प्रीत स्वाद सबा काल खदा गादा दाग दोष मुझ चलिया लाए।

ला पहला चोर सलाहे चीत न पीजै, जे बधी करे ता कसूर ना शीजे। चोर की हम्मा परे न कोय, चोर किया चंगा क्यों होय। सुन मन अंधे कुत्ते कूड़ियार, बिन बोले बूझिए सत्यार रहाओ। चोर सवाल्यो चोर से आना, खोटे का मुल एक दुगाना। जे साध रखिए दीजे रलाए, जा परखिए खोटा हो जाए। जैसा करे सो तैसा पावे, आप बीज आपे ही खावे। जे वड्याईया आपे खाए, जे ही सुरत ते है राहे जाए। जे सब कूड़िया कूड़ कबाड़, भावे सब आखो संसार। तुद भावे अद्धी परवान, नाग जाने जान सुजान। तना श्री महला पहला, ताया कागद मन परवाना। सिर के लेखना पड़े ए आना, दरगे खड़िए तीने लेख। खोटा कामन आवे वेख, नानक जेब च रुपा होए। खरा खरा आखे सब कोए रहाओ। कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया खाए। जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद। सो जोगी जो जुगत पछाणे, गुर प्रसादी एको जाने। काजी सो जो उल्टी करे, गुर प्रसादी जीवित मरे। तो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप तरे सगले कुल तारे। दान सबन सोई दिल धोवे, मुसलमान सोई मल खोवे। पढ़िया बूझे सो परवान, जिस सिर

आग साच रते अहे निस बैराग क्यों जुग में अमृत साची बाणी पूरे पाग हर नाम सुमाणी सिद्ध साधक तरसे सब लोए पूरे पाग प्राप्त होए सबके साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेखे आपे सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही न जाए से जन तन जिन एक नाम लिवलाए गुरमत साची साचा विचार आपे बगसे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूर्ख मूर्ख मन माहे होमे विच सवकार कुमाहे गुर प्रसादी होमे जाए आपे बगसे लए मिलाए बिखिया का धान बहुत अभमान अहंकार डूबे ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत साला ही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर न कोए जिस सच

अदृष्टा गोचर अपरंपर स्वामी पुर पूरे प्रगट कर दीने। राम पास चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरी सत संग पए हर कंचन चंदन कीने रहाओ। नव शेख खट बोले मुख आगर

अब रह गीत हर चंदौरी बन हर पात्रे यह तुहारो बीत रहाओ। चंदन लेप होद देखो सो गर्द पसम संगीत अमृत संग नाहे रुचि आवत विखेठ गौरी प्रीत। उत्तम संत पले संजोगी ए जुग में पवित पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ ताज बद रहे जीत। जन्म जन्म के किल विघ दुख फागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत। साध संग इन दुते निकसियो नानक एक परीत। तनासरी महला पंजवा पानी पखा पीसो संत आ गए गुण गोविंद जस गाई। सास सास मन नाम समारे क्यों विश्राम निध पाई।

छूटे बिरस जाए परमाई, अंध रूप रवे उसा मध्य जल कद पेखो जाई। तुम दयाल किरपाल किरपा निध पतत पामन गोसाई, पोर सूख आनंद राज पाए मुक्ते निमुख बुलाई। जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ के मन पाई, नाम जपत तृष्णा सा बुझी है नानक त्रिपत अघाई। तन्हा श्री महला पंजवा जिन कीने वसे अपने त्रै गुण, पावन चतुर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे, क्या यो जंत विचारा। प्रभ की ओढ़ गई तो छूटो साध प्रसाद, हर हर हर गाए बिखे ब्याज तब हुटो। अरहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए, न मोहे ओडीठी ऐसी ठगौरी पाए पुलावे, मन सबके लागे मीठी। माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेल्यो दुआ, किसी वाद काड़ किसी पै सगले लर लर मुआ। हौं बलिहारी सतगुरे अपने जिन यो चलत दिखाया, गूजी पाए जले संसारा भगत ना व्यापे माया। संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन का।

हो अन कबीरी समझाव हो, हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुमगी सजन सुहेले, रखो रखन हार दयाला, नानक करके गोले। तनासरी महला पंजवां, पूजा वर्त तिलक इस नाना,

पंजवा अब हर राखन हार चितारिया पत पुनीर किए खिन पीतर सगला रोग बिदारिया अरहाव गोष्ट पई साध के संगम काम क्रोध लोभ मारिया सिमर सिमर पूर्ण नारायण संगी सगले तारिया औखद मंत्र मूल मन एक मन विश्वास प्रतारिया क्या नरेन बांछे नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया तनासरी महला पंजवा मेरा लागू राम स्यों हेत सतगुर मेरा सदा सगाई जिन दुखा काटिया केत रखाओ आदे रखो अपना कर बिरथा सगल मिटाई निंदक के मुख काले कीने जन का आप सहाई साचा साहेब हुआ रखवाला रख लिये कंठ लाए निरपो पै सदा सुगमाने नानक हर गुण गाए तनासरी महला पंजवा औखद तेरो नाम दया।

तारण हर निध दुख न सके ब्याप, साधु संग भजो गोपाल, आन संजम किशना सूझे, ए जतन काट कल काल रहाउ, आद अंत दयाल पूर्ण, तिस बिना नहीं कोय, जन्म मरण निवार हर जप, सिमर स्वामी सोय, वेद सिमरत कथय सासत, भगत करे विचार, मुक्त पाई गे साध संगत, बिरस जाए अंधार, चरण कमल आधार जन का, रस पूंजी एक, तान मान दीवान साचा, नानक की प्रवटेक, तनासरी महला पंजवा, फिरत फिरत पेटे जन साधु, पूरे गुर समझाया, आन सगल विद काम न आवे, हर हर नाम ते आया, ताते मोय तारी ओढ़ गोपाल, शरण परयो पूर्ण परमेश्वर, बिनसे सगल जंजाल, रहाव, सुर्ग मृत पयाल भूमंडल, सगल व्यापे माए, जी उदाहरण सब कुल तारन, हर हर नाम ते आए, नानक नाम निरंजन गाइए, पाइए सर्ब निधाना।

पलो हर मंगना, देखो पसार नयन, सुनो साधु के बयन, प्राण पद चित राख सगल है मरना रहाओ, चंदन चो अरस पोग करत अनेक, बिखिया विकार दिग सगल है फीके, एक कह गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जान, तान तन अपन थाप्यो, हार जप न निमुख जाप्यो, अर्थ द्रव देख काश संग ना ही चलना, या कोरे कर्म पला तिन ओढ़ गई संत पल्ला, तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना, पायो रे परमन धान मिट्यो है अवमान, एक निरंकार नानक मन लगना, तनासरी महला पंजवा कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, कल कलेश लो मोह मा पौजल तारे रहाओ, सास सास निमख निमख दिन सरैन चितारे, ताल संग जपन संग मन निधान तारे, चरण कमल नमस्कार पुन गोविंद बिचारे, ताजना की रेन नानक मंगल सुख सुधारे, तनासरी महला पंजवा कर अठवा, दो पदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद, सिमरो सिमर सिमर सुख पाव, सास सास माले, हे लोग परलोक संग सगाई, जद कदम होए रखवाले, गुर का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाए ना साके जाले, रहाओ निर्तन कौ तन अंधले कौ टेक, मार दूध जैसे बाले, सागर मैं भोज पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले, तनाश्री महला पंजवा, पय कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय संचाई, नाम निध रिद सिद्ध हलागर ही जन पाई, संतन को आनंद सगल ही जाई, गृह बाहर ठाकुर भगतन का, रब रहा सर्वठाई रखाओ, ताको कोई ना पहुंचे नकारा, जाके अंग कुसवाई, जमकी त्रास मिटे जिस सिमरत, नानक नाम त्याई, तनासरी महला पंजवा, दर्भवंत दर्भ देख गर्भ, पूर्णवंत अभमानी, राजा जाने सगल राज हमारा, त्यो हरजन टेक स्वामी, जे को अपनी ओट समारे, जैसा बित तैसा होए वर्त, अपना बल नहीं हारे, रहाओ आन त्याग पै इक आसर, शरण शरण कर आए, संत अनुग्रह पै बन निर्मल, नानक हर गुण गाए, तनासरी महला पंजवा, जा को हारंग लागो इस जुग में, तो कई तगे सूरा, आत्म जिने सगल वसता के, जा का सदगुर पूरा, ठाकुर गाई गए आत्म रंग,

करे निर्बन जानत दूर तुमे प्रभनेर उद ताक उद ते उद पेख आवे लोभी फेर रहाओ। जब लग तुटे नाही मन परमा तब लग मुक्त न कोई पौ नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा नाम गुरदी हो अपने जाके मस्तक करमा नाम दिरड़ावे नाम जपावे ताका जुग में धर्मा जन को नाम वडाई सोभ नामो गत नामो पद जन की माने जो जो होग रहाओ। नाम धन जिस जन के पाले सोई पूरा साहा नाम व्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा। तनासरी महला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्श पेखे

चरण गए प्रभ अपने, सुख पायो दिन रात तनासरी महला पंजवा, पर हर ना लोभ चूड़ निंद ए भी करत गुदारी, मृत न आस मिथ्या मीठी ए टेक मने साधारी, सागत की आवरदा जाए बिरतारी, जैसे कागद के पार मूसा टूक गवाव, काम नहीं गावारी रहाओ, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी, बूढ़ अंध नानक प्रकाड साध जना संगारी, तनासरी महला पंजवा, सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना, शीतल तन मन छाती, रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म उरे जाती, रसना राम रसायन माती, रंग रंगी

प्रीतम स्यों मन लागा राव। जय जय पेखो तय नारायण सगल कटा मैं तागा। नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनुरागा। तनाश्री महला पंजवा जन के पूर्ण होए काम। कली काल महा बिखिया मह लज्जा राखी राम रहाव। सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना निट न आवे जाम। मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पाए हर का ताम। चरण कमल हर जन की थाती कोड़ सुख विश्राम। गोविंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान। तनाश्री महला पंजवा मांगो राम ते एक दान। सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ। चरण तुम्हारे हृदय वस संतन का संग पावो। सो अगर मैं मानना व्यापे आड़ पैर गुण गाओ। स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्यान्त प्रभ जापन। नानक रंग लगा परमेश्वर

खोतै तै स्वामी कोई न पहुंचन हार। जो जो करे अवग्या जनकी होए गया तत शार। करन हार खवाला होवा जाका अंत न पारावार। नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक।

पतत उदाहरण नाम तेरा। अंतरजामी नानक के स्वामी तरबत पूर्ण ठाकुर मेरा। तनासरी महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सत।

तृष्ण अगन प्रव्याप बुझाई नानक उदरे प्रव शरणाई तन्हा श्री महला पंजवा तृप्त भई सज भोजन खाया मन तरसना नाम थे आया जीवन हर जप साध संग रखाओ अनक प्रकारी बस्तर उड़ाए अनदन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ आस असवारी हर का

समुद्र सागर जिन खिन में तारा रहाओ, कोई हो आक्रम रत कोई तीर्थ नाया, दासी हर काराम त्याया बंधन काटन हार स्वामी, जन नानक सिमरै अंतर जामी।

साधो यो जग परम भोलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता पाई सुध बनता।

परम ध्यानी साच साचे भाव आनंद अनदन हरख साचा दुख किल विख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नामणु गावे गावन हार शब्द सुहावणु सारा ही सचे मन सदगुर पुन दान दया मते फिर संग पावे सहज नावे देनी ता संगम सत सते आराध एकंकार साचा नित दे चढ़े सवाया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कहे सब कोय ए बड़े आखिए ओ मूर्ख नीच अजान समझा साखिए सच गुर की साखी अमृत भाखी तित मन मान्या मेरा पूज करे आवे विख लादे शब्द सचे गुर मेरा आखण तोट ना भगत पंडारी भार पुर रहे आसोई नानक साच कहे बेनंती मन मान जाए सच सोई।

माया मोह जलाए प्रीतम रसमय रंग करेई, प्रभ साचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी। नानक साच वसी सोहागण किरस्यों प्रीत प्यारी, फिर कर सोहे नार।

दुख हर्त करता सुखे स्वामी चरण साधु आया। संसार सागर महा बिखड़ा पल एक महे तराया। पूरे या सर्वथाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो। बिनवंत नांग सदा सिमरी सर्व दुख पए पंजनो। आप लिगे लड़ लाए कृपा तारिया जियो। हुए निर्गुण नीज अनाथ प्रभ अगम अपारिया जियो। दयाल सदा कृपाल स्वामी नीचता पणहारिया। जी जनसा वस तेरे सगल तेरी सारिया। आप करता आप भुगता आप सगल बीचारिया। बिनवंत नान गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया। तेरा दर्श अपार

ते नीव खुदाई ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अदकाई जिन त्रेण थर मूंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्व करत हो बिरस जाए झूठी देही हरहाओ मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से पाई पार है जोजन छत्र चले था देही गिरज ना खाई सर्व सोयन की लंका होती रावण से अदकाई कहां पयो दर बंदे हाथी खिर में पई पराई दुर्वासा से करत ठगोरी यादव ए फल पाए कृपा करी जने अपने ऊपर नाम जो हर गुण गाए तस बैरागन मोए बस कीनी पंचो का मिट नावो सत्र दोए परे अमृत सार बिख को मार कढावो पाचे बौर न आवन पावो अमृत बाणी कढ़ते उचरो आत्म को समझावो रहाओ बजर कुठार मोए है शीना कर मिनत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो ये संसार ते तब ही छूटो जो माया नह लपटावो माया नाम गर्भ जोन का ते ता दर्शन पाओ इत कर पड़त करे जो जान तेन पो सगल चुकाई है कहत नाम दो बार क्या परम हो ए संजम घर पाइये मार वाड़ जैसे नीर बालगा बेल बालगा करहला जो कुरंक निसनाद बालगा जो मेरे मन रामैया तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अतरंग रूड़ो मेरो रामैया अरहाओ जो तरणी को इंद्र बालगा कुसुम्बा जैसे पवरला जो कोकल को अंब बालगा जो मेरे मन रामैया चक्री को जैसे सूर बालगा मान सरोवर हंसला जो तरणी को कंत बालगा जो मेरे मन रामैया पार्ग को जैसे खीर बालगा चात्रक मुझे से जलथरा मछली को जैसे नीर बालगा जो मेरे मन रामैया साधक सिद्ध सगल मुन चाह है बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरु नाम बालख त्यो नाम में मन बीठला पहल पुरगे पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानऊ हर हर नचंती नाचना पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचे पिंदी मैं सागरा हरहाओ नाचंती गोपी जन्ना नैया ते बैरे कन्ना तर्क नाचा प्रमिया चा केसवा बचौनी।

तना श्री भगत रविदास जी की एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अपतियार क्या कीजे पचनी तोर मोर मन मान जन को पूर्ण दीजे हौ बल बल जाओ रमैया कारण कारण कमन अबोल अरहाओ बहुत जन्म बिछरे थे माधो यो जन्म तुम्हारे लेखे तहे रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे चित सिमरन करो नैन अवलोकनो सरवन बाणी तुजस पूर राखो मन सुमद कर करो चरण हिरदे धरो रसन अमृत राम नाम पाखो मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटे मैं तो मोल महगी लई जी सटे परहाओ सा संत बिना पाव नहीं उपजे पाविन भगत नहीं होए तेरी कहे रविदास एक बेनती हरस्यों पैज रखो राजा राम मेरी नाम तेरो आरती मजन मोरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे अरहाओ नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले छिटकारे नाम तेरा अंबला नाम तेरो चंदनो ताजते नाम ले तुझे कोचारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे नाम तेरे की जोत लगाई पयो उजियारो पमन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारे सगल जूठारे तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तुही चबर ठोलारे दस अठा अड़सठ चारे कानी एह वर्तन गए सगल संसारे कहे रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे तना

आपे सदगुर समुंद मथाहा आपे मथ मत तत कढ़ाए जप नाम रतन ओ महाराम सखी मिलो मिल गुण गावाहा गुरमुख नाम जपो हर लाहा हर घर पगदड़ी मन पाई हर घर नाम ओ महाराम आपे वड़दाना वड़ सह गुरमुख पूंजी नाम सह हर घर दाद करो प्रभावे गुण नानक नाम ओ महाराम जैत श्री महला चौथा मेल सत्संगत संग गोराहा पूंजी नाम गुरमुख वे साहा हर हर कृपा तार मधुसूदन मेल सत्संग ओ महाराम हर गुण बाणी शर्म सुनाहा हर कृपा सदगुरु मिलाहा गुण गावे गुण बोले बाणी हर गुण जप ओ महाराम तब तीर्थ वक्त जग पुन तोलाहा हर हर नाम ना पुजे पुजाहा हर हर अतुल तोल अदपारी गुरमुख

इड़तन रूपहीन किज साक न सिन्ना राजा सगली सिटका हर नाम मन पिन्ना तिसकी तूड़ मन उदरे प्रभो एसो प्रसन्ना श्लोक अनक लीला राज रस रूपं छतर चमर तख्त आसन रचत मूड अज्ञान अंध नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हावरंग माणिया मिठा लगड़ा मोह नानक नाम विहूणिया सुंदर माया त्रोहो पौड़ी सुपने से तीचित मूर्ख लाया बिस्तरे राजरस पोक जागत पगलाया आर जा गई वेहाय संदे ताया पूर्ण पय ना काम मोया माया क्या वे चारा जंत जा आप पुराया श्लोक बसंत स्वर्ग लोक है जिद ते प्रथमी नव खंडन है विसरंत हर गोपाल है नांग ते प्राणी उद्यान परमण कौतक कोड तमाशय चेतन आवस नाओ नानक कोड़ी नरक बराबर उजड़ सोई थाओ पौड़ी महापयान उद्यान नगर कर मानिया चूड़ समगरी पेख सद कर जानिया।

ओक राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भत है संचंत दिखिया शलंग शिद्रंग नानक बिन घर संग न चालते पेखंदड़ो की पुल तुम्मा दिस्तम सुना अड़ना लहंदड़ो मुल नानक साथ न जुलई मा।

नाद को रंग के बेदया सन्मुख उड़तावे पवर लोभी कुसुम्बास का मिल आप बंधावे तू संत जना कर प्रीत है देख दर्श अघावे श्लोक चितवंत चरण कमलंग सास सास आराधन नय विश्रांत नाम अच्युत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है सीतड़ा मन मजावे पलक न थी वे भारा नानक आसड़ी निभावे सदा पेखंदो सच तणी पौड़ी आसावंती आस कुसाई पूरी है मिल गोपाल गोविंद ना कबहु चूरी है त्यो दर्श मन चाओ ले जाए वे सूरी है कोय पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरी है श्लोक रसना उच्चरंत नामंग सर्वणंग सुनंत शब्द अमृत है नांग तिन सद बलिहारंग जिन्ना त्यान पार ब्राह्मण हब कूड़ा वे कम एक साई बारे नांग से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावे प्रा मत्था हर्ज लिखे बेअंत सोह है से हत्था चरण पुनीत पवित्र चाले प्रापत्था संता संग उधार भगला दुख लत्था श्लोक पावी अदोद करणंग आरमणंग संजोग पूर्ण है गोपाल दस पेटंग सफल नांग सो मुहूर्त की न सकता पाए सोख मिति हु बारे नानक सावे लड़ी परवान जित मिलंदड़ो मा प्री पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई तो मूर्त पला संयोग है जित मिले गुसाई आड़ पैर हर त्याय कै मन इच्छ पुजाई वड़े पाग सत्संग होए निवलागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई श्लोक पत पुनीत गोविंद है सर्व दुख निवारण है शरण सूर भगवान है जे पंत नानक हर हर हरे छड्यो हबे आप लगड़ो चरणा पास नचड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदिया पौड़ी मेल लहो दयाल तय पय द्वारिया रख ले वो दीन दयाल प्रमत बहु हारिया भगत विशल तेरा बिरद हार पतत उधारिया तुझ बिन नाही कोय बिनो मोय सारिया कर गए लहो दयाल सागर संसारिया श्लोक संत उदरण दयालं आसरं गोपाल कीर्तन निर्मलं संसंगेन ओट नानक परमेश्वर चंदन चंदन सरद रुत मूल न मिटई काम तीतल तीवे नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओड़ उदरे सगल जान तुण प्रताप गोविंद निरपो पये मन तोट न आवे मूल संत्या नाम तान संत जनासु संग पाइये वड़े पुन आड़ पैर हर चाहे हार जस निरसुन श्लोक दया करणंग दुखरणंग उच्चरणंग नाम कीर्तन दया पुरख भगवान ने नानक लिप्त न माया पाए बलंदड़ी बुल गई रखंदड़ो प्रवे

आद हरूड़ो महारंगो लोड़ काली हर नीहो ना होए रहाओ हाँ टूडेंदी दर्शन कारण बीती बीती पेखा गुरमिल परम गवाया हे एबद पाई मैं साधु कन्हो लेख लिखियो तुर मत एबद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा गर्भ गैलड़ो मूड़ो ही ओ रे ही ओ महाराज री मायो तीघर न्याई मुए फाट्यो रे हरहाओ कणो कणो कणो सा लोड़े बिन लैने कैठे पायो रे महाराज रो गाथ वाउस लुबड़ो ने भगड़ो पाए संजोयो रे सुन मन सीख सजन सगलो थारे सगले प्राश्त मिट्यो रे जाको लैणो महाराज री गाठड़ियो जर नानक करभास ना पौड़ियो रे टोडी महला पंजवा तार पंजवा दो पदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभु जी कीन पंच दुख और अंग रोग ए तंत सगल दूर कीन रहाओ बंधन तोर शोर बिखियाते गुर को सब मेरे ही रे दीन रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचारियो प्रेम गयो मुए हर रंग पीन पेखो लालन पाड़ बीज खोए अंध चिता हरखे।

आचे गोकल मध्य श्याम गो नामे मध्य राम आचे राम श्याम गोबिंद गो अराग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध शिष उपावे पज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान पुराण उत्तम खड़ दर्शन गावे राम शंकर करोड़ तेतीस ते आयो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिन कौ ते संत पले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको पुर सतगुरु दान देवायो हरहाओ ते जन को मन तन सब देव जिन हर घर नाम सुनायो तन माया संपैत देव जिन घर मीत मिलायो खिन किंचित कृपा करी जगदीशर तब हर घर हर जल त्यायो जन नानक हर भेटे स्वामी दुख होमे रोग गवायो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ जुगज करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावे हर आपे ही मत देवे स्वामी।

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कुटंतर के पाप सब खोवे। हर पवजिल पार उतारा रघाओ, काया नगर बस्त हर स्वामी। हर निर्भव निर्वैर निरंकारा, हर निगट बस्त कजनदर न आवे। हर लादा गुर विचारा, हर आपे सहो सराफ रतन हीरा। हर आप किया पासारा, नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे। तो साओ सचा बणजारा, बैराड़ी महला चौथा। जप मन हर निरंजन निरंकारा, सदा सदा हर त्याये सुखदाता। जाका अंत न पारा वारा, रहाओ अगन कुंट में उर्द लिव लागा। हर राखे उदर मंजारा, सो ऐसा अगर सेव हो मेरे मान। हर अंत शिडामन हारा, जाके हृदय बसया मेरा हर हर। इस जन कौ करो नमस्कारा, हर कृपा ते पाए गए हर जप। नानक नाम अधारा, बैराड़ी महला चौथा। जप माना

पावै, विण कर्मा किछ पाइये नाही, जे वो तेरा तावे। लब लोभ अंकार की माती, माया माए समाणी, इन्नी बाती सो पाइये नाही, भई कामण एयाणी। जाए पुछो सुहागणी वाहे, किन्नी बाती सो पाइये, जो किछ करे सो भला करमानिए, हिकमत हुकम चुकाइए। जा के प्रेम पदार्थ पाइए, तो चरणी चित लाइए।

बाद तब आए हो मुख समाह हुक्म सा वर्तनी सच साहेब सचा खेल सब हर तनी सारा हो सच सब ऊपर हर तनी जिस नाही कोई शरीक किस लेखे हो गनी अरहाओ पौन पानी धरती आकाश घर मंदिर घर बनी विच वरते नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने वाल।

गुरु साबास है हर देश स्नेहा औ वेख वे गुरु विकसया गौर सदगुर देखा गोरसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जेन सुन सिखा गुरमनिया तिना पुख सब जावी हर का मार्ग आखिए तौ किदबद जाइए हर घर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर आरा दया सेसा वरदाने हौ सतगुर को सदवारिया गुर भजन समाने तू ठाकुर तू साहिब तू है मेरा मीरा तुद पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी।

निर्दिन में प्राणी छिन छिन औध बिहात है, फूटे कड़जो पानी हराव हर गुण गए ना गाव ही, मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कह न मरन पछाना, आजू काज बिगड़ो नहीं जो प्रभु गुण गावे, कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावे, तिलंग महला नामा जाग लेहो रे मना जाग लेहो, कहां गाफल सोया जो दल उपजिया संग ही, सो ती संग न होया रखाओ, मात पिता सुध बंद जान हित जा सो कीना, जियो छूट्यो जब देत डार अग्न मैं दीना, जीव तलो व्योहार है जको तुम जानो, नान खर गुण गाए ले सब सुफन समानो, तिलंग महला नामा हार जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ले मेरो अरहाओ, संपत रतन राश्यो आत्मो लगायो, काल फास जब गल परी।

तीन तेरा नाम है अधारा अरहाव करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी हाजरा हजूर दर पेश तू मनी दरियाओ तू देहंद तू विशियार तू तनी देह लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे ते स्वामी बगसंद तू हरी हल्ले यारा खुशखबरी बाल बल जाओ हौ बल बल जाओ नीकी तेरी बेगारी आले तेरा नाओ अरहाओ कुजा आमत कुजा रवती कुजा मेरवी द्वारका नगरी रास बगोई

आवे रसना नाम जपोता मथिये इन विद अमृत पावो मन संपट जित ससरनावन भावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहेब रब तरहे कहंदे कह कहे कहे जावे तुम सर अवर न कोई भगत हीन नानक जन जंपे आओ सारा ही सच्चा सोई सूफी मोहल्ला पहला कर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद अंतर वसे ना बाहर जाए अमृत छोड़ कहे बिख खाए ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे हो वो चाकर साचे केरे रहाओ ज्ञान ध्यान सब कोई रवे बंधन बंधया सब जग पवे।

तीर्थ मल मल नहाए, तेरा सदड़ा सुनीजे पाई, ये को भय अलाए, अरहाओ, जैसा भी जे सोलने, जो खट्टे सो खाए, अगय पुछ न हो गई।

करी जे को लय विकाए नानक काम न आवई जिद तन नाही सच्चा नाव। सूही मोहल्ला पहला कार सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जोग ना खिंता जोग ना डंड जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूड मुड़ाए जोग ना सिंगी वाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दृष्ट कर समसर जाने योगी कही है सोई रहाओ जोग ना बाहर मड़ी मसानी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना देद संतर पवे है जोग ना तीर्थ नाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है सतगुर भेटे ता सहसा टूटे धावत वर्ज रहाई है निजर चरे सह तुन लागे करगी परचा पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुग तिव पाई है नानक जीव त्या मर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाजों सिंगी वाजे तौ निरभौ पद पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत तौ पाई।

तू आपे सर्व समाना रहाओ, मन तारा जी चित तुला, तेरी सेव सराब कमावा, घट ही पीतर सो सो तोली, तेन विध चित रहावा, आपे कंडा तोल तारा जी, आपे तोलनहारा, आपे देख आपे बूझ, आपे है बणजारा, अंदुला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, ताकी संगत नानक रहंदा, क्यों कर मूड़ा पावे। राग सूही महला चौथा, कार पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, तब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन प्रबोधया, हर पिया रस गटके, अरहाव सत्संगत उत्तम सदगुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मिलो सत संगत, हम तोवे पाग जान के, राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाती तेस तिसके, हमरी जात पाद गुर सदगुर,

कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरे कामन कामन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा बर ना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना मैं हर हर नाम तरसोई ज्यों पावे त्यों राख मेरे साहिब मैं तुझ बिन अवर ना कोई रखाओ मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तुझ आगे अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पासे विचे धरती विचे पानी विच काष्ट अग्न तरीजे बकरी सिंह इकते थाए रख मन हर जा प्रम पौ दूर कीजे हर की वडियाई देखो संतो हर निमाणिया मान देवाए यो धरती चरण तले ते ऊपर आवे त्यो नानक साध जना जगत आन सा पैरी पाए सूही महला चौथा तू करता सब किस आपे जाने क्या तुझ पे आख सुनाइए बुरा पला तो सब के सूझे जेहा को करे तेहा को पाइए मेरे साहेब तू अंतर की बेद जान है बुरा पला तो सब के सूझे तुद भावे तेवे बुलावे रखाओ सा मोह माया शरीर हर किया विज देही मानुख भगत कराई एक ना सतगुर मेल सुख देव है एक मनमुखो तंद पिटाई सब को तेरा तू सबना का मेरे करते तो सबना से लिखिया लेख जे ही तू नदर करे तेया को होवे बे नदरी नाही को पेख तेरी वडियाई तू है जाने ता तुद नित तिहाय जिसनु तुद भावे तिसनु तू मिल है जन नानक सो थाए पाए सूही महला चौथा जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर इनके सब रोग गवाए ते मुक्त पाए जिन हर

अतीत सदाए माया का माता, मन नहीं प्रीत कहे मुख राता, कहो नानक प्रा बिनो सुनीज, कुचल कठोर

तुम छड़ाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना रहाओ, पर्वत दोख महाबिकराला, खिनमह दूर किए दयाला, सोग रोग बिपत अत पारी, दूर पई जप नाम मुरारी, दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गए नानक सरणाए, सूही महला पंजवा, दीन छड़ाए दुनी जो लाए।

उदर नांग प्रवयंतर जामी सूही महला पंजवा साध संग तरै पैसागर हर हर नाम सिमर रतनागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सोग सा बिनसे गुरपूरे मिल पापत जायन रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ मन तन निर्मल सा सुआओ आड़ पैर पार ब्रह्म ते आई है पूर्व लिखित होए ता पाई है शरण पए जब दीन दयाला नानक जाचे संतर वाला सूगी महला पंजवा घर का काज न जानी रूड़ा झूठे धंधे रचियो मूड़ा जित तू लाभ है तित तित लगना जा तू दे तेरा नाव जपना रहाओ हर के दास हर से तीरा ते राम रसायन अन दिन माते बहां पगर प्रव्या पे काढ़े जन्म जन्म के टूटे गांडे उधर स्वामी प्रभ कृपा थारे नानक दास हर शरण द्वारे सूही महला पंजवा संत प्रसाद निचल कर पाया सर्व सुख फिर नहीं डोलाया गुरु त्याए हर चरण मन चीने ताते करत अस्तर कीने रहाओ गुण गावत अचुत अबनासी ताते काटी जम की फासी हर कृपा लीने लड़ लाए सदा आनंद नानक गुण गाए सूही महला पंजवा अमृत बजन साध की बाणी जो जो जप तिसकी गत होवे हर हर नाम नित रसन बखानी अरहाओ कली काल के मिटे कलेसा एको नाम मन मह परवेसा साधु तूर मुख मस्तक लाई नानक उधरे हर गुर शरणाई।

आग प्राप्त होई अरहाओ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोनी दूता लाई प्रेम शोगा करत कसाई निर्दय जंत तिरदया न पाई अनक जन्म बीतियन फरमाई तरवास न देवे दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई किस दोष न दीजे किरत पवाई सुन साजन संत जन पाई चरण सरण नानक गद पाई अराग सूही

हर गुण निध पाई अवलोकना पुनः पुनः करो जन का दरसार अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार चित वो मन आशा करो जन का संग मांगो नानक को प्रोदया कर।

तेन पी अंत न पायो तेरा, लाए थके विभूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया। सबल दर्शन भेट्यो गुरु नानक, ता मन तन

ना कुल टंग ना मीठे बैना अरहाव छह सीकर कामन करे आवे ता सुहागण जा कंते पावे ना तिस रूप ना रेख्या काई अंत ना साहेब सिमरिया जाई तुरत मत ना ही चतुराई कर कृपा प्रभ लाभ हो पाई खरी सियाणी कंत न पाणी माया लागी परम फुलाणी हो में जाई ता कंत सुमाई तो कामन प्यारे नव निध पाई आनक जन्म बेशरत दुख पाया कर गए लेहो प्रीतम प्रवराया पंत नानक सौ है पी होसी जय पावे प्यारा तय रावेसी सूही महला पहला कर नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कच्चा रंग कसुंभ का

तू है, गुरमुख वेख अधूर अंतर पी तू है, मैं दीजे नाम निवास अंतर सांत होए, गुण गावे नानक दास सदगुर मत दे, राग सूही महला तीजा कार पहला अष्टपदियां एक ओंकार, सदगुर प्रसाद नामे गीते सब कुछ होवा, बिन सदगुर नाम ना जापे गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साधना जापे कौडी बदले जन्म गवाया, तीन सनाही आपे गुरमुख होवे ता एक हो जाने, होमे दुख ना संतापे बलिहारी गुर अपने विटो, जिन साचे स्यो निवलाई शब्द कीन आत्म परगासया, सहजे रहया समाई अरहाओ, गुरमुख गावे गुरमुख बूझे गुरमुख शब्द बीचारे, जियो पिंड सब गुर ते उपजे गुरमुख कार्ज सवारे, मनमुख अंधा अंध कमावे बेखटे संसारे, माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारे, सोई सेवक जे सतगुर सेवे चले सतगुर पाए, साचा शब्द सिफत गए साची साचा मन नमसाए, सची बाणी गुरमुख आखे होमे विचों जाए, आपे दाता कर्म गए साचा साचा शब्द सुनाए, गुरमुख ताले गुरमुख खटे गुरमुख नाम जपाए, सदा अलिपत साचे रंग राता गुर के सहज सुपाए, मानमुख सदगी कूड़ो बोले बिख बीजे बिख खाए, जम काल बद तृष्णा दद बिन गुर कमन छिड़ाए, सच्चा तीर्थ जित ससर नावन गुरमुखिया बुझाए, असर तीर्थ गुर शब्द दिखाए तित नाते मल जाए, सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल ना मल लगे ना लाए।

दातड़ी नित हिरदे रखा समाल पाव जुलाई पंध तो नैनी दर्श दिखाल श्रावणी सुनी कहानिया जे गुर थीवै किरपाल किती लख करोड़ प्रिये रोम ना पूजन तेरिया तू साही हूं साहो हौ कह ना सका गुण तेरिया सईया तऊ असंख मयो हब वधानिया एक पोरी नदर निहाल।

तुद अंतर हों सुख वसा, तू अंतर सा वास जीओ, पाणे तखत वडाइया, पाणे भीख उदास जीओ, पाणे थाल सिर सर्व है, कामर फुल आकाश जीओ, पाणे भवजल लंघी है, पाणे मंज परियास जीओ, पाणे सो सो रंगला शिवतरता गुणतास जीओ, पाणे सौ पीहावला हौ आमन जान मुइयास जीओ, तू सो अगम अतोलवा हौ कह कह टह पैयास जीओ, क्या मांगो क्या कह सुनी मैं दर्शन पूख प्यास जीओ, गुरसबदी सौ पाया सच नानक की अरदास जीओ, सूही महला पंजवा गुणवंती जो दिसे गुर सिखड़ा तेस निम निमला गोपाए जीओ, आखा बिरता जी की गुर सज्जन देह मिलाए जीओ, सोई दस उपदेसड़ा।

दूरों चल के मैं तकी तो सरनाए जियो मैं आसा रखी चित मैं मेरा सबो दुख गवाए जियो इत मार्ग चले पाई अड़े गुर कहे सो कार कमाए जियो त्यागे मन की मतड़ी

बिन गुर गुण ना सुमावनी बलराम जियो, गुण सार न जानी परम फुलाणी, जोबन बाद गवाया वार कार दार दर्शन नहीं जाता, तिरका सहज ना पाया, सदगुर पूछ ना मार्ग।

शांति दूर है, जैसी आसा तैसी मनसा, पूर है या भरपूर है, हर की नार सो सर्व सुहागण, रांड ना मैं ले वैसे, नानक मैं वरसा चा पावे, जोग जोग प्रीतम तैसे, बाबा लगन गणाए, हंग पी वन्या, सौरे बलराम जियो, साहुकम रजाए।

टाउक नेरा सुन प्रमेर मैं तेरा परवस दर्शन देख पई ने केवल जन्म मरण दुख नस सगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सुभाए नानक साजन कौ बल जाइए साच मिले कर आए कर आएड़े साजना ता तन करी सरसी राम हार मोहेड़ी साच ठाकुर देख रहंसी राम गुण संग रहंसी खरी सरसी जा रवि रंग रते अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विधाते तस्कर मारवसी पंचायण अदल करे विचारे नानक राम नाम निस्तार गुरमत मिले प्यारे वार पाएड़ा बालड़िए आस्था मनसा पूरी राम तेरे रावे अड़ी शब्द रली रब रहया न दूरी राम प्रा दूर न होई कड़कड़ सोई तिसकी नार सबाई आपे रसिया आपे रावे ज्यो ते दी वड्याई अमर अडोल अमोल अपारा गुरपूरे सच पाई है नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़िए मारड़िए त्यो लोवा सिरता जा राम हाँ विष्णु पई देह गुणा अनहद शब्द अगा जा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानों।

अवरीता त्यो तन दिन स्यों गाड़ेया मान लीड़ा दीता लिया ता दिया मान जिन स्यों से सज्जन क्यों विसर है जिन दिस आया होए रलिया जी सेती गए रह सागल गुण अवगुण ना कोई होहे नीता नीता हों बलेगारी सज्जना मीता अवरीता गुणा का होवे वासला कड़वास लई जे जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जे सांझ करी जे गुणे कैरी छोड़ अवगुण चली है पैरे पटंबर कर अडंबर अपना पिड़ मलिए जिथे जाए भइए पला कहिए चोर अमृत पीजे गुणा का होवे वासला कडवास लई जे आप करे किसे आखिए होर करे ना कोई आखणता को जाइए जे फूलड़ा होई जे होए फूला जाए कहिए आप करता क्यों फुल्ले सुने देखे बाज कहे दान अणमंग्या देवे दान दे दाता जग बेदाता नानका सच सोई आप करे किसे आखिए होर करे ना कोई सूही महला पहला मेरा मन रहता गुण रवे मन भावे सोई गुर की पौड़ी साज की साचा सुख होई सुख सहज आवे साज पावे साज की मत क्यों टले इसनान दान सुग्यान मज्जन आप अशले हो क्यों शले पर पंच मोह विकार थके कूड़ कपटना दोई मेरा मन रहता गुण रवे मन पावे सोई साहेब सोसा लाई है जिन कारण किया मैल लागी मन मैले है किने अमृत पिया मत अमृत पिया एहो मन दिया गुरपै मोल कराया अपनड़ा प्रसहज पछाता जा मन साचे लाया तिस नाल गुण गावा जे तिस पावा क्यों मिले होए पराया साहेब सो सराई है जिन जग त्यो पाया आए गया की ना आयो क्यों आवे जाता प्रीतम स्यो मन मानिया हर से ती राता साहेब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारिया पांच पू नाय को आप सरंदा जिन सच का पिंड सवारिया हम अवगण यारे तू सुन प्यारे तुद पावे सच सोई आमन जाना ना थी है साची ही मत होई अंजन तैसा अंजिए जैसा पिर पावे समझे सूझे जानिए

पर आया जगत सबाया, कौन जाने बिद मेरिया, आवने जावने खरे डरावने, तोट न आवे फेरिया, ना मिहूने ऊने चूने, ना गुर शब्द सुनाया, मन परदेसी जेती है, सब देश पर आया, गुरमहलनी करे अपने, तो परपुर लीना, सेवक सेवा ता करे, सच शब्द पतीना, शब्दे पतीजे अंक पीजे, तो महल महला अंतर है, आप करता करे सोई, प्रभ आप अंत निरंतर है, गुर शब्द मेला ता सोहेला, बाजंत अनहद बीना, गुर महलनी करे अपने, तो परपुर लीना, कीता क्या सालाही है, कर वेखे सोई, ता की कीमत ना पवे, जे लोचे कोई, कीमत सो पावे, आप जान आवे, आप अफुल ना फुल्ले, जय जयकार करे तुद पावे, गुर के शब्द अमूल्य, हीनो नीच करो बेनंती, साच ना छोड़ो पाई, नानक जिन कर देखया, देवे मत साई, राग सूही, शांत, महला तीजा, कार दूजा, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, सुख सोई लड़ा कर त्याव हो, गुरमुख हर फल पाव हो, गुरमुख फल पाव हो, हर नाम त्याव हो, जन्म जन्म के दुख निवारे, बलिहारी गुरे अपने विट्ठो, जिन कार्य सब सवारे, हर प्रभु कृपा करे हर जाप हो, सुख पर हर जन पाव हो, नानक कहे सुनो जन पाई, सुख सुलड़ा कर त्याव हो, सुन हर गुण पीने सहज सुपाय, गुरमत सहजे नाम त्याय, जिन को तुर लिखया, तिन गुर मिलया, तिन जन्म मरण पाओ पग, अंदरों दुर्मत दूजी खोई, सो जन हर लिव लागा, जिन कौ कृपा कीनी मेरे स्वामी, तिन अनदिन हर गुण गाए, सुन मन पीने सहज सुभाए, जोग मैं राम नाम निस्तारा, गुरते उपजे शब्द विचारा, गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा, जिस कृपा करे सो पाए, सहजे गुण गावे दिन राती, केल वेख सब गवाए, थौ को तेरा तू सब ना का, थौ तेरा तू हमारा, जोग मैं राम नाम निस्तारा, साजन आए बुठे कर माही, हार गुण गावे तृप्त गाही, हार गुण गाए सदा तृप्तासी, फिर भूख न लग गए आए, दहे दिस पूज होवे हर जन की, जो हर हर नाम ते आए, नानक हर आपे जोड़ विछोड़े, हर बिन को दूजा नाही, साजन आए बुठे कर माही, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, राग सूही, महला तीजा, कार तीजा, भगत जना की हर जीव रख है, जुग जुग रखदा आया राम, सो भगत जो गुरमुख होवे, हमें शब्द जलाया राम, हमें शब्द जलाया, मेरे घर पाया, जेदी सच्ची बाणी, सच्ची भगत करे दिन राती, गुरमुख आख बखाणी, भगतां की चाल सच्ची अत निर्मल, नाम सच्चा मन पाया, नानक भगत सोह है दर सच्चे, जिनी सचो सच कमाया, हर भगतां की जात पत है, भगत हर के नाम सुमाने राम, हर भगत करे विचों आप गवाव है, जिन गुण अवगुण पछाणे राम, गुण अवगुण पछाणे हर नाम खाणे, पए भगत मीठी लागी, अनदिन भगत करे दिन राती, करगी मह बैरागी, भगती राते सदा मन निर्मल, हर जीव वेखै सदा नाले,

मन मजी वधाई। जब साजन सुने कर आए, गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए, वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बाल सिखाई, नानक कृपा करके मिले, विछड़ कदे ना जाई। सूगी महला चौथा, हर पहलड़ी लाव, प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जीओ, बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ हो, पाप तजाया बलराम जीओ, धर्म दृढ़ हो, हर नाम त्याओ, सिमरत नाम दृढ़ाया, सदगुर गुरपूरा आराध हो, तब किलबिख पाप गवाया, सहज आनंद हुआ वडभागी, मन हर हर मीठा लाया, जन कहे नानक लाभ पहली, आरंभ काज रचाया, हर दूजड़ी लाभ, सदगुर पुरख मला।

नदर प्रभु सत्संग हर मंगल रस रसन रसाय नारक नाम परगासा अंतरतन बीचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रसवते पाया जो प्रभु कहे सोई पर कीजे नानक अंक समाया हर प्रभु काज रित्याया गुरमुख वियाहने आया गुरमुख अर पाया सातन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाय हर जीव आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रपाया मैं सचा ना कदे मरे ना जाई राग सूगी शंत महला चौथा कार तीजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद आवो संत जनो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है करवाजे शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे कर प्रतेरे तू करता सब ताई आयन जपी सदा सालाही साज शब्द लिवलाई अन दिन सहज रहे रंग राता राम नावृद पूजा नानक गुरमुख एक पछाणे अवर ना जाने दूजा सब में रव रहया हो प्रभ अंतर जमी राम गुर शब्द रवे रव रहया हो प्रभ मेरा स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जमी कट कट रव्या सोई गुरमत सच पाईए सह समाईए तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभावा आपे लए मिलाए नानक सो प्रभ शब्दे जापे अहेन सुनाम ते आए इहो जगो दुत्तर मनमुख पार न पाई राम अंतरे होमे ममता

नाही, ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रैन आस तुम्हारी, सबल दर्श पेटिया गुरपूरा, नानक सब बलिहारी, समलिया सच थान, मान महत सच पा।

हर गुण निधे हर संतन के वसे आए राम। संत चरण गुर सेवा लागे तिनी परम पद पाए राम। परम पद पाया आप मिटाया हर पूर्ण कृपा तारी। सफल जन्म हुआ पो पागा हर पीटिया एक मोरा।

प्रीतम हर गुण सुनिए अबनासी राम। सुन सुन यो मन निर्मल होवे कटिए काल की फासी राम। कटिए जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सो ज्ञाना हर हर जप जप।

सच रते से निर्मले होमे तज विकारा, जिस तू मिले सो तुद मिले सो ईस त्यारा। श्लोक महला तीजा, सूविगे सूहा सब संसार है, जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में झूठ सा बिनस जाए। ज्यों टेके ना बिरख की छाओ, गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सगत सिवे कर आई, मन वसया हर अमृत नाओ। नानक बलिहारी गुर अपने, जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा, सूहा रंग विकार है तंतन पाया जाए। इस लेंदे बिल मना हो वई, रंड बैठी दूजे पाए। मुंद एयानी दुमनी सूहे वेस लुभाए। शब्द सच्चे रंग लाल कर, पाए पाए सीगार बनाए। नानक सदा सुहागणी, जे चलन सतगुर पाए पौड़ी। आपे आप उपायन आप कीमत पाई, सीधा अंत न जापई गुर शब्द बुझाई। माया मोह गुबार है,

आपे श्रेष्ठ उपायन आपे फुन गोई जुग चारे सब पक्ष की किन कीमत होई। सतगुर एक विखालिया मान तन सुख होई गुरमुख सदा सलाई है करता करे सोई। श्लोक मोहल्ला दूजा जिन्ना पाओ तिन नाए पाओ मुझ पौने पवे आहा नानके उपटंतरा तित दीबान गए आहा। महला दूजा तुरदे को तुरदा मिले उड़ते को उड़ता जीवते को जीवता मिले मुए को मुआ नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सचे गुर शब्द विचारी। होमे मार मन निर्मला हर नाम उरतारी कोठे मंडप माड़िया लग पै गवारी जिन की एत से ना जाननी मनमुख गुबारी। जिस बुझाए सो बुझसी सत्या क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामण तो सीगार कर जा पहला कंत मनाए मत से जे कंत न आवई ए वै बिरथा जाए। कामण पिर मन मानिया तो बनिया सीगार किया तो प्रवान है जा सो तरे प्यार। पाओ सिगार तंबोल रस भोजन पाओ करे तान मन सौंपे कंत को तो नानक भोग करे। महला तीजा काजल फूल तंबोल रस

पौड़ी सच्चा अमर चलायून कर सतपुरमान सदा निचल रव रहा सो पुरख सुजान गुर प्रसादी सेविए सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान आगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका भीतर तरिया आन खोटे खरे परखियन साहिब कै दीवान महला पहला नावन चले तीरथी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नात्या दोए पा चढ़िए सहोर बार तोती तूमड़ी अंदर विस निकोर साध पले अणनात्या

आई, अत्यंत नाम बसया मन आई, होमे माया शब्द जलाई, दर साचे गुरते शोभा पाई, जगदीश से वो मैं अवर ना काजा, अन दिन अंध होवे मन मेरा, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ, मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को समसर विख है, बौड़ ना मरे ना जमपिख है, करही मैं सब कोट निधान, सदगुर दिखाए गया अभिमान, सदगी लागा सहज ध्यान, अनदिन गावे एको नाम, इस जुग में वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम ते आई, जय दिखा तै रहा सुमाई, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई, पूरे पाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निधान दिखाया, गुर का शब्द अत मीठा लाया, नानक तृष्ण बुझी मन तन सुख पाया।

जो नडुआ तंत वजाए तंती त्यों वाजे जंत जना। जप मन आराम नाम रसना मस्तक लिखत लिखे गुर पाया हर हिरदे हर बसना रहाओ। माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी रख ले वो जने अपना ज्यों प्रहलाद हरनास ग्रस्यो हर रख्यो हर सरना। कामन कमन की गत मित कहिए हर की गे पतत पवन्ना। ओ टोवे टोर हाथ चम चमरे हार उतरियो परयो सरना। प्रभ दीन दयाल भगत पवतारन हम पापी राख पपना। हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दासन्ना। बिलावल महला चौथा हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मती शरणागत पुरख अजन्मा। कर कृपा रख लेवो मेरे ठाकुर हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मान बाज राम नाम रामा गुरमत हरस पाईए होर त्यागो नेफल कामा रखाओ। हर जन सेवक से हर तारे हम निर्गुण राख उपमा। तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकुर हर जपिए वड़े कर्मा। नाम हीन त्रिग जीवते तीन वट दुख सहमा। ओए फिर जून पवाईए मंद भागी मूड अकर्मा। हर जन नाम आधार है तुर पूर्व लिखे वट कर्मा। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जन नानक सबल जनमा। बिलावल मोहल्ला चौथा हमारा चित लुभ तुम्हें बिखिया बहु दुर्मत मैल भरा तुमरी सेवा कर न सके प्रभ। हम क्यों कर मुग्ध तरा मेरे मान जप नरहर नाम नरहरा। जन ऊपर कृपा प्रवतारी मिल सदगुर पार परा रहाओ। हमरे पिता ठाकुर प्रास्वामी हर द्यो मती जस करा। तुमरे संग लगे से उधरे जो संग कास्ट लो तरा। साकत नर होशी मत मध्यम जिन हर घर सेव न करा। ते नर पाघीन दोचारी कोई जन्म मोए फिर मरा। जिन कौ तुम घर मिलो स्वामी ते नाए संतोह गुरसरा। दुर्मत मैल गई घर भजया जन नानक पार परा। बिलावल महला चौथा आवो संत मिलो मेरे पाई मिल हर घर कथा करहो। हर घर नाम बोत है कलयुग खेपट गुर शब्द करहो। मेरे मान हार गुण हार उच्च हो मस्तक लिखत लिखे गुण गाए मिल संगत पार पर हो रहाओ। काया नगर में राम रसी उत्तम क्यों पाइये उपदेश जन करहो। सतगुर सेव सबल घर दर्शन मिल अमृत हरस पियो। हर घर नाम अमृत घर मीठा हर संतो चाख दिखो। गुरमत हरस मीठा लाग ते बिस्तरे सबिख रसो। राम नाम रस राम रसायन हर सेवो संत जनो। चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर पजो। बिलावल महला चौथा खत्री ब्राह्मण सूद वैस ओ जापे हर मंत्र जपैनी। गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो नित सेवो दिन सब रैनी। हर जन देखो सतगुर नैनी जो इच्छो

बात होवे नहीं। अपना पला सब कोई बांछे, सो करे जे मेरे चितना चितैनी, मन की मत त्यागो हरजन, एहा पात कठैनी, आन दिन हर हर नाम त्यावो, गुर सतगुर की मत लैनी, मत सुमत तेरे वस स्वामी, हम जंत तू पुरख जनतैनी, जन नानक के प्रभ करते स्वामी, जो पावे ते वे बोलैनी।

पड़ परताप गुर प्रसाद न होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब थाई बूठे सब सुख पाए सद गुर तूठे पार ब्रह्म प्राप्त रखवाले।

ऐसो ज्ञान बिरलो ई पाए, जत जत जाइए तत धृष्टाए रघाव। अनक अरंग निर्गुण एकरंगा, आपे जल आप ही तरंगा, आप ही मंदिर आपे सेवा, आप ही पुजारी आप ही देवा।

तान मन तान अर्पो सभ्य अपना, कमन सुमत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रा मंगन, तुम पेखत सोभा मेरे आंगन रखाओ, आनक जुत कर बहुत बिचारो, साध संग इस मने उधारो, मत बुसुरत नहीं चतराई, ता मिल गए जान लय मिलाई, नयन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सबल सो आया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रब रहया प्रसम में आपे, हार जप रसना दुख ना व्यापे रखाओ, तिखा भूख बो तप्त व्यापया, शीतल पए हर हर जस जापया, कोट जदन संतोख न पाया, मान तृप्ताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बलाबल महला पंजवा, गुरपूरा बड़ भागी पाइये, मिल साधु हर नाम त्याइये, पार ब्रह्म प्रो तेरी सरना, केल काटे पर गुर के चरना रखाओ, आवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे,

आओ नित राम के ए अवखद जोग, आए बसो कर देश में ए पले संजोग, नानक प्रसो प्रसन्न पए ले गए वियोग। बिलावल मोहल्ला पंजवा, काहू संग न चालही माया जंजाल, ऊठ सुधारे शदरपत संतन कै ख्याल रखाओ, अहंग बुद्ध को बिनसना ए तुरकी टाल, बोजूनी जन्मे मरे बिख्या विकराल, सत बचन साधु कह निध जपे गोपाल, सेमर सिमर नानक तरे हर कै रंगलाल। बिलावल मोहल्ला पंजवा, सहज समाध आनंद सुख

तो प्रसन्न पै सगुर प्रभु कज विघ्न नाथीय जा का अंग दयाल प्रभ ताकि सबदास सदा सदा वडियाईया।

अवसर दुलभाया, अंतर्यामी आप प्रभु सब करे कराया, पद पुनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया, मद फूलो मानुख जान माया परमाया, नानक तिस पत राखसी जो प्रभ है राया, बिलावल मोहल्ला पंजवा माटी तेजन साजया, कर दुर्लभ देखे आनक शिदर मन में टके, निर्मल दृष्टि हे क्यों बिस्तरे प्रा मने ते, जिसके गुण एहे प्राप तज रचे जे आन स्यो, सो रलिगे खे हे रघाव, सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करे हे, छोड़ प्रपंच प्रसुमरचो तज कूड़े नेहे, जिन अनक एक बहु रंग किए है हो सी एहे, कर सेवा तस पार ब्रह्म गुरते मत लेहे, ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरनेहे, दास दास को दासरा नानक कर लेहे, बिलावल मोहल्ला पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अन आस, सब ऊपर सुमरथ प्रभ पूर्ण गुणतास, जनका नाम आधार है प्रसरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रखाओ, आप रखे आप देवसी आपे प्रतपारे, दीन दयाल कृपा निधे सास सास संहारे, करणहार जो कर हया साई वड्याई, गुर पूरे उपदेसे आ सुख खसम रजाई, चिंत अंदेसा गणत ताज जन हुकुम पछाता, नै बिनसे नै छोड़ जाए,

अंध कुब मैं गलत थे ताडे दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन पेड़त होवत सुखी जी दान देन रखाओ पारा पूर्वला लिखया मिलया अब आए बस्त संग हर साध कै पूर्ण आसाए पै बिरसे त्यो लोग के पाए सुख थान दया करी समरथ गुर बसिया मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करण कारण समरथ प्रभ हर अगम अपार बलावल मुहला पंजवा सोई मलीन दीनहीन जिस प्रभ बिसराना करने हार ना बूझई आप गने बेगाना दुख तदे जद विसरे सुख प्रचित आए संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रखाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन में थापे कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रतापे पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुबने का सुबना पया संग चलिया कमाया करण कान समरथ प्रभ तेरी शरण आई हर दिन सरायण नानक जपे साध सदबल जाई बलावल मुहला पंजवा जल टोवो ए शीश कर पग पखलाओ बार जाओ लख बेरिया दर्श पेख जीवावो करो मनोरथ मने माहे अपने प्रवते पावो दियो सूनी साधके बीजन ठो लावो रगाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पी लावो वारस में सांत तृप्त होए बिखे जलन बुझाओ जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो करो नमस्कार भगत जान तूर मुख लावो उठत बैठत जपो ना क्यों कर्म कमावो नानक की प्रा बेनती हर शरण समाओ बिलावल मुहला पंजवा इहो सागर सोई तरह जो हर गुण गाए साध संगत कै संग वसै वडभागी पाए सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जने आखी प्रगट पई सब लो मैं सेवक की राखी रखाओ आगन सागर ते काढ़या प्रभ जलन बुझाई अमृत नाम जल संचिया गुर पए सखाई जन्म मरण दुख काटया तो का थान पाया काटी सिलक प्रम हो की अपने प्राप आया मत कोई जानो अवर कश सब प्रभ के हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ बिलावल मुहला पंजवा बंधन काटे आप प्रभ हुआ कृपाल दीन दयाल प्रपार ब्रह्म

रोग रगाव औगध हर का नाम है जित रोग ना व्यापे साध संग मन तन हित फिर दुख ना जापे हर हर हर हर जापिए अंतर लिवलाई केल उत्तरे शुद्ध होए साधु शरणाई सोनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बिलाई महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई बलावल महला पंजवा पय ते उपजे भगत प्रभ अंतर हुए शांत नाम जपत गोविंद का बिरसे परम प्रांत गुरपुरा जिस फिटिया ताके सुख परवेश।

जी जंत सो प्रसन्न भए देख प्रताप करज उतारिया सतगुरु कर आहर आप खात खर्चित निभत रहे गुर शब्द अखूट।

राम नाम तन संचया जाका नहीं सुमार। शरण परे प्रभु तेरिया प्रभु की वडियाई, नानक अंत ना पाईए बेअंत गुसाई। बिलावल मोहल्ला पंजवा सिमर सिमर पूर्ण प्रभु, कार्ज पैरास करतारपुर करता वसै, संतन कै पास रखाओ बिघन न को लागता। गुर पै अरदास रखवाला गोविंद राय, भगतन की रास तोट न आवे कदे मूल। पूर्ण पंडार चरण कवन मन तन बसे, प्रभ पगम अपार बस्त कमावत सब सुखी। किश ऊन ना दिस संत प्रसाद पेटे प्रभु, पूर्ण जगदीश है। जय जयकार सभे करे सच थान सोह, जप नानक नाम निदान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल मोहल्ला पंजवा हर हर हर आराधिये, होइए आरोग रामचंद की लश्त का जिन मारिया रोग। रखाव गुर पूरा हर जापिए नित कीचे भोग, साध संगत कै वारणे मिलया संयोग। जे सिमरत सुख पाईए बिन से बियोग, नानक प्रभु शरणागति करण कारण योग। राग बिलावल महला पंजवा दो पदे कर पंजवा, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद अवर उपास त्यागया।

को नास, चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास। कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग कड़ सास रहाओ। मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास, नानक प्रभ शरणागति जा को निर्मल जास। बिलावल मोहल्ला पंजवा सर्ब सिद्ध हर गाई।

खोए खोई हो मोको सतगुर मंत्र दरड़ाए। अतुल अतुल अतुल न तुलिए भगत वशल कृपाए।

लीनो प्र अमृत नाम महारस दीनो दास की लाज रखे मेहरवान गुर नानक बोले दरगह परवान राग बिलावल महला पंजवा चौपदे दो पदे कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार ते मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा रहा बिस्मन बिस्म पाए जो पेख्यो तैन न जाए वडियाई मगन पै ऊहां संग माते ओत पोत लवटाई आल जाल नहीं कछु जंजारा अहं बुद्ध नहीं पोर ऊचन ऊचा बीचन खीच हौते रा तू मोरा एक अंकार एक पासारा एक अपर अपारा।

चारे वर्ण न साके एक रोमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिए किस कथन न जाई जय जय देखा तय रया समाई रखाओ जय महा भयान दुख जम सुनिए तै मेरे प्रभु तू है सगाई शरण परे उहर चरण गए प्रभ गुरु नानक को बूझ बुझाई बिलावल मोहल्ला पंजवां आगम रूप अवनाशी करता पातत पवित एक निमख जपाइए आचरज सुनियो प्रात फेट ले संत चरण चरण मन लाइये कित विधिये कित संजम पाइये कौ सुरजन के जुति त्याइये रखाओ जो मानुख मानुख की सेवा ओत की लई लई फुन जाइये नानक सरन सरन सुख सागर मुए टेक तेरो एक नाइये बलावल महला पंजवा संत सरन संत टहल करी तंद बंद आर सगल जंजारो अवर काज ते छूट परी रखाओ सुख सहज आर कनो आनंदा गुर ते पायो नाम हरी ऐसो हरस बरन सको गुर पूरे मेरी उल्ट तरी पेख्यो मून सबके संगे ऊन न काहू सगल परी पूर्ण पूरयो कृपा निध को नानक मेरी पूरी परी बलावल मोहल्ला पंजवां।

ऊपर पावे, एकत सुनत सदा संहरे रहाओ। काज भयाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होमन तौरा अनहोमन मीठा, दिखिया मैं लपटाए जरे। अंध कूप मैं परे हो प्राणी, परम गुबार मुँह बंद परे। कहो नानक प्रभुत दयारा, गुर पीटे काढ़े वहां भरे। बिलावल महला पंजवा, मन तरसना हर चीना, पै आनंदा मिटे अंदेसे।

दयाल स्वामी सर्वस संत जना तनमाल नानक जाचक दर्श प्रामंग है संत जना की मिले रवाल बिलावल मोहल्ला पंजवां सिमरत नाम कूड़ जतन पए साध

चरण गहे आमन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपो होए पजो जगदीश इो पदार्थ वड़ भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रदाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल महला पंजवां सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कही ना पहुंचे सुलही होए मुआ ना पाक रखाओ काट कुठार खसम सिर काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचया जिन रचिया तिन दीना ताक पुत्र मीत तन किशु न रहो तो छोड़ गया सा पाई साक कहो नानक तिस प्रभ लिहारी जिन जनका कीनो पूर्ण वाक बलावल मोहला पनवा पूरे गुर की पूरी सेव

बनायो आप अपने सेव की आपे रख ब्रह्म मेरे को वड प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर वस कीने जिन सगले जंत चरण कमल नानक शरणाई आराम नाम जप निर्मल मंत्र।

हस प्रदीने जगत उधारन नवखण परताप दुग बिन से सुख अंध प्रवेशा त्रिशन बुझी मन तन सज तराप अनाथ को नाथ शरण समर्थ सगल सहित को माई बाप भगत वछल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक आलाप बिलावल मोहला पनवा जिस ते उपजिया तिसे पछान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम होए कल्याण रखाओ गुरपूरा पेट्यू बड़ भागी अंतर जामी सुड़ सुजान हाथ दे राखे घर अपने बड़ समरथ निमाणिया को मान प्रम पै बिनस गए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास आराध्य नानक सदा सदा जाएगे कुर्बान बिलावल महला पंजवा दोवे थाव रखे गुरसूरे हलत पलत पार ब्रह्म सुवारे कार्ज होए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होवत साधु तूरे आमन जान रहे थिद पाई जन्म मरण के मिटे बसूरे प्रम पै तरे छुट्टे पै जम के कट कट एक रहा पर पूरे नानक सरण परे दुख पंजन अंतर बार पेख हजूरे बिलावल महला पंजवा दर्शन देखत दोख नसे

क्या गुण तेरे सार संहारी, सास सास प्रभु तुम्हें चितारी, कृपा निध प्रभु दीन दयाला, जी जंत की करो प्रतपाला, आठ पैर तेरा नाम जन जापे, नानक प्रीत लाई प्रभु आपे, बिलावल मोहल्ला पंजवां, तान तन जोबन चलत गया, आराम नाम का भजन न कीनो, करत विकार निस्पोर पया रहाओ, अंग प्रकार भोजन नित खाते, मुगदंता खस खीन खया, मेरी मेरी कर करम उठो, पाप करत ने परी दया, महा विकार कोर दुख सागर, जिसमें प्राणी गलत पया, शरण परे नानक स्वामी की, बहां पगर प्रव काड लया, बेलाबिल मोहल्ला पंजवां।

मूल लाल नस्यो प्रीत बनी अरहाओ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माहे बस्त है तू कर कृपा प्रवे अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को आकथ कथा जाकी बात सुनी जन नानक दासन दास कहित है मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी बिलावल महला पंजवा हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हिरदे तर मन ध्यान रखाओ सिमर सिमर सिमर सुखदाता जाका किया सगल जहान रसना रबो एक नारायण ताती दरगे पावो मान साधु संग प्राप्त जाको तिन्ही पाया इहो निधान गावो गुण कीर्तन नित स्वामी कर कृपा नानक दीजे दान बिलावल महला पंजवा राख लिगे सतगुर की शरण जय जय कार हो आज अंतर पार ब्रह्म तेरो तारण तरण रखाओ विश्वम पर पूर्ण सुखदत्त सगल समग्री पोखण परण थान सनंतर सर्व नरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करण आद जुगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरण।

दूत धुट सब होए खया। गुण अवगुण प्रकश ना विचारयो, कर कृपा अपना कर लया। अतुल बड़ाई अचुत अविनाशी, नानक उचरे हर की जया। बिलावल मोहल्ला पंजवां, बिन पय भगती तरन कैसे, करो अनुग्रह पथ उदाहरण। राग स्वामी आप भरोसे रखाओ, सिमर नहीं आवत फिरत मदमावत। दिखिया राता स्वान जैसे, औद विहावत अधक मुहावत। पाप कुमावत बुढ़े ऐसे, शरण दुख पंजन पुरख नरंजन। साधु संगत रमन जैसे, केशव कलेश नास अग खंडन। नानक जीवत दर्श दिसे,

आपे मेल लए, जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। तज अवमान अरचिंत बैरानी साधे शरण पए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तांते रोग खय। महामुख अजान अज्ञानी रखे थार दए, कहो नानक गुरपुरा फिट्यो आमन जान रहे। बिलावल मोहल्ला पंजवां, जीवो नाम सुनी जो सो प्रसन्न पए गुरपुरे, ता मेरी आस पुन्नी रखाओ। पीर गई बंदी मन तीरा मुयो अंध तुनी, उबजो चाओ मिलन प्रा प्रीतम रहन ना जाए खिनी। अनक भगत अनक जन तारे तिमरे अनक मुनि, अंध ले टेक नेर थन थन पायो। प्रभ नानक अनक गुणी, राग बिलावल महला पंजवां कर तेरवां पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद मोहन नींद न आवे हावे, हार कजर बस्तर अवरन कीने ओडीनी ओडीनी ओडीनी कब कर आवे री रखाओ। शरण सुहागन चरण शीश धार।

गने ना जाहे, हर बिना कते समाहे, गए ओट चितवी नाथ, नानका दे रख हाथ, हर गुण दे गोपाल, सर्व कड़ प्रतपाल, मन प्री दर्शन प्यास, गोविंद पूर्ण आस, एक निमख रहन ना जाए, वड़भाग नानक पाए, प्रभ तुझ बिना नहीं होर, मन प्रीत चंद चकोर, जो मीन जल सुवेत, आल कमल पिन ना पेत, जो चकवी सूरज आस, नानक चरण प्यास, जो तरन परत परान, जो लोभिगे तन दान, जो दूध जले संजोग, जो मां खुदिया रस भोग, जो माद पूते हेत, हर सिमर नानक नेत, जो दीप पतन पतंग, जो चोर हिरत निसंग, मैगल कामे बंद, जो ग्रस्त बखई तंद, जो जुआर बिसन ना जाए, हर नानक इहो मन लाए, कुरंक न देने हो, चात्रक चाहत में हो, जन जीवना सत्संग, गोविंद भजना रंग, रसना बखाने नाम, नानक दर्शन दान, गुण गाए सुन लिख दे, तो सर्व फल हर ले, और समूह करत उधार, संसार उतरस पार, हर चरण भोजित ताहे, मिल साध संग जस गाहे, हर पैज रखे मुरार, हर नानक सरण

तृतीय ब्रह्मा विष्णु महेशा देवी देवे उपाए वेसा ज्योति जाति गणतन आवे जिन साजी सो कीमत पावे कीमत पाए रहा भरपूर किस नेड़े किस आखा दूर चौथ उपाए चारे वेदा खाणी चारे बाणी फेदा अष्ट दिशा खड़ तीन उपाय तो बूझे जिस आप बुझाए तीन समावे चौथे वासा वरुण तनानक हमता के दासा पंचमी पंच पूत बेताला आप अगोचर पुरख निराला एक परम भूखे मोह प्यासे एक रस चाख सब तृप्ता से एक रंगराते एक मरतूर एक दार कर साचे देख दूर झूठे को नाही पदनाओ कब न सूचा काला काओ पिंजर पंखी बंदिया कोए छेरी पर में मुक्त न होए तौ छूटे जा खदम छिड़ाए गुरमत मेले भगत दरड़ाए खष्टी खट दर्शन प्रसाजे अनहद शब्द निराला वाजे जे प्रप हावे ता महल बुलावे सब दे फेदे तौ पद पावे तार कर वेस खपे लै जावे साचे साचे साच समावे सप्तमी संतोख शरीर सास मुंद परे निर्मल नीर मजन शील सजर दे विचार गुर के शब्द पावे सा पार मन साचा मुख साचो पाए सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अठ सिद्ध बुद्ध साधे सच ने केवल कर्म आराधे पौन पानी अग्नि बिसराओ तही निरंजन साचो नाओ तिसमय मनुआ रहा लिव लाए परुण तनानक काल न खाए नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा कड़ कड़ नाथ महाबल

फलोहार पिए फल जाए, रस खाए साध गुआए, कूड़े लालच लपटे लपटाए, टूटे गुरमुख साज कमाए, दुआ दस मुंदरा मन अवधूता, ऐन से जाके कवे न सूता, जागत जाग रहे लिवलाए, गुर परचित काल न खाए, अतीत पै मारे बैराई, परणत नानक तय लिवलाई, दुआसी दया दान कर जाने, बार जा तो पीतर आने, बरती बरत रहे ने काम, अजपा जाप जपे मुख नाम, तीन पौन में एको जाने, साव सु संजम साज बिछाणे, तेरस तरवर समुंद किनारे, अमृत मूल शिखर लिवतारे, डाडर मरे ना बूढ़े कोए, निडर बूढ़ मरे पद कोए, डर में कर कर में डर जाने, तख्त निवास सच मन पाने, चौदस चौथे थावे लय पावे, रायस तामस सतकाल समावे, ससियर कह कर सूर समावे, योग जुत की कीमत पावे, चौदस पवन पाताल समाए, खंड ब्रह्मंड रहया लिवलाए, अमावस्या चंद गुप्त गैनार, बूझो ज्ञानी शब्द विचार, ससियर गगन जोत त्यो लोई, कर कर वेखे करता सोई, गुरते दिसे तो तिसगी माहे, मनमुख पूले आवे जाहे, तार दर थाप फिर तान सुहावे, आप छाणे जा सतगुर पावे, जय आसा ते बिनस बनासा, फूटे खपर दुबदा मनसा।

सतगुर प्रसाद आदित वार आदि पुरख है सोई आपे वरते अवर न कोई ओत पोत जग रहा परोई आपे करता करे सो होई नाम रते सदा सुख होई गुरमुख विरला बूझे कोई हिरदे जपनी जपो गुण तासा हर अगम अगोचर अपरंपर स्वामी ज्ञान पग लग त्याओ हुए दासन दासा रहाओ सोमवार सज रहा समाए इसकी कीमत कही न जाए आख आख रहे सब लिव लाए जे देवे ते पल्ले पाए अगम गोचर लिखिया ना जाए गुर के शब्द हर रहा समाए मंगल माया मोह उपाया आपे सिर सिर तंदे लाया आ बुझाए सोई बूझे गुर के शब्द दार कर सूझे प्रेम भगत करे लिव लाए होमे ममता शब्द जलाए बुधवार आपे बुध सार गुरम करणी शब्द विचार नाम रते मन निर्मल होए हर गुण गावे होमे मलक होए तार सच्चे अशोभा पाए नाम रते गुर शब्द सुहाए लहा नाम पाए गुरुद्वार आपे देवे देवन हार जो देवे तिस कौ बल जाइए गुर प्रसादी आप गवाइए नानक नाम रखो उरतार।

जय पावे तय रखत हुई, जय जय जयंप सगल जाको करना पत गत के ने लखो, नानक पयम पै सेव सेवक ज्यों जानो त्यों मोहि रखो।

मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे तो भाई सो मेरा वीर मेल मिल सकी गुण कहो मेरे पाप के ले सतगुर की मत धीर जन नानक की हर आस पुजावे।

लूट लेहे सागत पद खोवे, सात जना पग मल मलत होवे, पांच पूत जने एक माए, उत पुज खेल कर जगत विहाए, तीन गुणा के संग रच रसे, इनको छोड़ ऊपर जन

पार ब्रह्म जप सदा निहाल रखाओ। प्रावदयाल दूसर कोई नाही, कड़ कड़ अंतर सर्व समाही। अपने दास का हलत पलत सवार, पातत पावन प्रा बिरद तुमार। अवध को

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन बस अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गही गोंड मोहल्ला पंजवां जा को राखे राखनहार इसका अंग करे निरंकार रहाओ माद गर्भ में अगना जो है।

राम रतन पसे मन आए, सफल जन्म ताका परवान, पार ब्रह्म निट कर जान। पाए भगत प्रभु कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहूं सच वापार। दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर। राग गूंड अष्टपदियां, महला पंजवां कर दूजा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। कर नमस्कार पूरे गुरुदेव, सबल मूर्त

जैसे गाय का बाछा छूटला, थान चोखता माखन कूटला, नाम दियो नारायण पाया, गुर पीड़ित अलख लखाया। जैसे बिखे हिद परनारी, ऐसे नामे प्रीत मुरारी, जैसे तापते निर्मल कामा, तैसे राम नामा।

अंत जो जुगतार उब जो ज्ञान हुआ परगास पर कृपा लीने कीटदास कौरवदास तप्त सना चूकी जब मुकंद सेवा ताहू की गोंड

बूंद में सागर तवन बुझे बिद जाने, ओत खुद चलते आप कर चीने, आपे तत पछाने। ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस ते मुक्त परम गत होई रहाओ। दिन में रहन रहन में दिनियर, उसन सीध बिद सोई, ताकि गत मित अवर ना जाने, गुर बिन समझ न होई। पुरख में नार नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में ध्यान ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। मन में जोत जोत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिनकै सद बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई।

अगली कहि खबर न पाई, रोवन हार पे ऊट सधाई, परम हो के बांधे बंद, सुबन पया पहलाए अंध, यो तो रजन रचिया करतार, आवत जावत हुकम अपार, न को मुआ न मरने योग, न बिन से अविनाशी होग, जो यो जानो तो यो नाहे, जान नगारे को बल जाओ, कहो नानक गुर परम चुकाया, ना कोई मरे न आवे जाया। राम करी मोहल्ला पंजवा, जब गोविंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीव है, फिर ना खाई महाकाल रखाओ, और जन्म प्रम प्रम प्रम आयो, बड़े पाग सा संग पायो, बिन गुर पूरे नहीं उधार, बाबा नानक आखे।

तेराए सो नर भोर न जो नी पाए जाके अंतर पलट्यो आप ताको नाही दुख संताप ला रतन पाले परया सगल कुटम ओ जन ले तरिया।

जिसे सहाई होए भगवान अनक जतन ओ आके सरंजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जीतो सगला पवन बेअंत महिमा ताकी केतक वर्ण बल बल जयगे ताके चरण तिन्हीं किया जब तब ध्यान अनक प्रकार किया तिन दान भगत सोई।

अंत की बार ऊठ सिधारे ना बिनासव चूठ परानी गोविंद भजन बिन अवर संगराते ते सा माया मूठ परानी रखाओ तीर्थ नाये न उतर समायल कर्म धर्म सब हो में फैल लोक बिचारे गत नहीं होए ना बिहूने चल सहे रोए बिन हर नाम ना टूटस पटल सो दे शास्त्र सिमरत सगल सो नाम जपे आप जपाए सगल फला से सुख समाए राखन हारे रख हो आप सगल सुखा प्रतुम रे हाथ।

पटल गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा हो निर्मल जियो सोधत सोधत सोध बिचारा बिन घर भगत नहीं छुटकारा सोहर भजन साध कै संग मन तन रापे हर कै रंग छोड़ सियाण पोच तराई मन बिर हर नावे जाए ना काई दया धारी गोविंद गुसाई हर हर नानक टेक टकाई राम करी महला पंजवां संत कै संग राम रंकेल आगे जमस्यो होए ना मेल अंग बुद्ध का पया विनाश दुर्मत होई सगली नास राम नाम।

आन संतोह आया मन पूरा पाए फिर मांगन काहे जाए हर की कथा सुनत पवित जेवा भगत पाई गत मत तो प्रवान जिहृदय वसाई नांग तेजन उत्तम पाई राम कली महला पंजवा गहो कर पकरी न आई हाथ प्रीत करी चाली नहीं साथ कहो नानक जो त्याग दई तब ओ चरणी आए पई तुन संतो निर्मल विचार आराम ना बिन गत नहीं काई गुर पूरा भेटत उधार रखाव जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गुमान जब उसको कोई मन पर हरे तब ओ सेवक सेवा करे मुख बिरावे अंत ठगावे एक ठौर ओ कई ना समावे उन मोहे बहुते ब्रह्मांड राम जनी किन्नी खंड खंड जो मांगे सो भूखा रहे इस संग राचे सो कछु ना लहे इसे त्याग सत्संगत करे वडभागी नानक ओ तरे राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्वमय पेख पूर्ण पूरया प्रतेक रतन अमोल हृदय मैं जान अपनी वस्तु तू आप पछाण पी अमृत संतन प्रसाद वड़े भाग होवे तो पाईए बिन जेवा क्या जाने स्वाद रहाओ आठ दस बेद सुने कह डोरा कोड प्रगास न दिसत अंधेरा पशु प्रीत घास संग्रच जिस नहीं बुझावे सो कित बुझ जानन हार रहा प्रवजान ओत पोत भगतन संगान बिगस बिगस अपना प्रवगाव है नानक तिन जम नेड़ ना आव है राम कली महला पंजवा दीनो नाम इो पवित हर तन रास निरास ए बित काटी बंद घर से वालाए हर घर भगत राम गुण गाए बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गावे हर जन अपने गुरुदेव ने।

माया मोहया टेढ़ हो जात अभागे तय लाज नाही सुख सागर पूर्ण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रखाओ अमृत कौरा बिखिया मीठी सागत की बेद नयन हो डीठी ऊड़ कपट अहंकारी जाना नाम सुनत जन बिशु डसाना माया कारण सदगी चू है मान मुख कवे न उस्तत करे निरपो निरंकार दातार इसु प्रीतन करे गवार सब सहा सिर साचा साहो वे मोहताज पूरा पाप साहो मोह मगन लप

न हो भी सोग, कहु न व्यापे हो मैं रोग। खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी, विस्मन विस्म पय विस्मादा, परम गद पावे हर सिमर प्राणी रखाओ। गण मन देखो सगल विचार, ना बिना को सके ना तार। सगल उपावन चल है संग, पवजल तरिगे प्रभु के रंग। देही तोय न उतरै मैल, होमे व्यापे दुबदा फैल। हार हर औखद जो जन खाए, ताका रोग सगल मिट जाए।

प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी कड़का रहता मेरा प्रभ रहाओ ताकी गई मन ओट बंधन ते होई चोट हृदय जप परमानंद मन माहे पय आनंद तारण तरण हर सरण जीवन रूप हर चरण संतन के प्राण आधार ऊचे ते ऊच अपार सुमत सार जित हर्ष मरीजे कार कृपा जिया पे दीजे सुख सहज आनंद हरनाओ नानक जप्या गुर मिलनाओ राम कली मुहल्ला पंजवा सगल सियान पछाड़ कर सेवा सेवक साज अपना आप सगल मिटाए मन चिंदे से ही फल पाए हो सावधान अपने गुर स्यों आसा मनसा पूर्ण होवे पावे सगल निधान गुर स्यों रखाओ दूजा नहीं जाने कोय सदगुर निरंजन सोए मानुख का कर रूप ना जान मिली ने माने मान गुर की हर टेक टिकाए अवर आसा सब लाहे हर का नाम

नाम जपत परम सुख पाईए, आवा गौण मिटे मेरे मीत रखाव, गुण गावत होवत प्रगास, चरण कमल में होए निवास, संत संगत में होए उधार, नानक भवजल पुत्र सपार। राम कली महला पंजवां, गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जप सदा सुहेले, सगल बिना से रोग कूरा रखाओ, एक अरथ हो साचा सोए, जा की शरण सदा सुख होए, नींद सुहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत बिन से सब दुख, सहज आनंद करो मेरे पाई, गुरपूरे सब

सेवा राम रवीजे, नानक ना मिले कृपा प्रभु कीजे। राम कली महला पहला, अंतर उद्भुज अवर न कोई, जो कहिए सो प्रते होई, जुगे जुगंतर साहिब सोई, उद्भुत परलो अवर न

जन्मे त्यों मरण पया, ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम सार भव जल पया, तान तन देखत गर्भ गया, तनक कामनी सुहेत वधाए, की नाम सार है परम गया, रहाव जत स संजम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर में काष्ट पया, उन दान इसनान ना संजम, सास दिन बाद जया, लाल तिलागे नाम सारे, आवत जावत जन्म गया, जा जम ताए केस गए मारे, सुरत नहीं मोकाल गया, ऐस निंदा ताद पराई, हृदय नाम न सर्व दया, बिन गुर शब्द न गत पद पाव है, राम ना बिन नरक गया, खिन में वेश करे टुआ ज्यो, मोह पा में गलत गया, एत पुद माया देख बसारी, मोह माया के मगन पया, करे विकार विथार कनेरे, तोरत शब्द बिन परम पया, हम में रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया, सुख संपद को आवद देखे, सागत मान अब महान भया, जिसका यो तान तान सो पर लेवे, अंतर से साधु पया, अंत काल के साथ ना चाले, जो दिसे सब तिसे माया, आद पुरख अपरम परसो प्राभ, हर नाम हृदय ले पार पया, मुए को रोवे किसे सुनावे, पय सागर असरार पया, देव कुटाम्ब माया ग्रे मंदर, सागत जंजाल पराल पया, जा आए ता तने पठाए, चाले तने बुलाए लया, जो कुछ करना सो कर रहया, बख्शन हारे बख्श लया, जिन तो चाखिया राम रसायन, तिनकी संगत खोज पया, रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ शरण पया, दो सो गुरमुख सम कर जाना, हरक सोग ते भगत पया, आप मार गुरमुख कर पाए, नानक सह समाए लया, राम कली दक्षिणी मोहल्ला पहला, जत स संजम साज दृढ़ाया, सा सद रहीना, मेरा गुरदयाल सदा रगलीना, ऐस रह एक लिव लागी, ताचे देख पतीना रखाओ, रह गगन पुर दृढ़ समय सार।

सगल जोन मैं तू सिर तरिया, अब तू सीज पावे नी सीजे, कारज सबरे मन प्रव त्याईज, ईगा ऊहा एक ओही, जद का देखिए तत तत ओही, ते सेवत मन आस करे जिस विसरे एक निमख न सरे, हम अपराधी निर्गुनियारे, ना के सेवा ना करु मारे, गुर बोहे थवड भागी मिलया, नानक दास संग पाथर तरिया, राम कली मोहला पंजवां, ताऊ बिहावे रंग रस रूप, ताऊ बिहावे माए बापूत, ताऊ बिहावे राज मिलक वापारा, संत बिहावे हर नाम अधारा, रचना साज बनी सबका एक तनी रहाओ, ताऊ बिहावे वेद अरबात, ताऊ बिहावे

सोग परमीजा ताहु पवन तार जात बेगाए संत बेगावे कीर्तन गाए ताहु बेगावे दिन रैन चाल ताहु बेगावे सो पिड़माल ताहु बेगावे बाल पढ़ावत संत बेगावे हर जगावत ताहु बेगावे नट नाटक निरते ताहु बेगावे जिया ए हिरते ताहु बेगावे राज मैंडरते संत बेगावे हर्ज करते ताहु बेहावे मता मसूरत ताहु बेहावे सेवा जरूरत ताहु बेहावे सोधत जीवत संत बेहावे हरस पीवत जित को लाया तित ही लगाना ना को मूड नहीं को स्याना कर कृपा जिस दे वे नाओ नांग ताके बल बल जाओ राम कली महला पंजवा दावा अग्न रहे हर बूट माद गर्भ संकट ते छूट जाका नाम सिमरत पो जाए तैसे संत जना राखे घर राय ऐसे राखन घर दयाल जत का देखो तुम प्रतपाल रखाओ जल पीजो तिखा मिटंत तन बिसे ग्रे आवत कंत लोभी का तन प्राण आधार त्यों हर जन हर घर नाम प्यार किसानी जो राखे रखवाला मात पिता दया जो बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखे कंठ लाए जो अंधले पेगत होए आनंद गूंगा भगत गावे बोचंद पिंगल पर्वत परते पार हर के नाम सगल उदार जो पावक संग सीत को नाश ऐसे प्राशित संत संग विनाश जो साबन पापर उजल होत नाम जबत ता प्रम पखोत जो चक्री सूरज की आस जो चात्रक बूंद की प्यास जो कुरंक नाद कर्ण समाने त्यो हर नाम हर जन मने सुखाने तुमरी कृपा ते लागी प्रीत दयाल पहेता आए चीत दया तारी तन तारण हार बंधन ते होई छुटकार तब थान देखे नैन अलोय जिबन दूजा अवर न कोय प्रम पे छूटे गुर प्रसाद नानक पेख्यो सब बिस्मात राम कली महला पंजवा जी जंत सब पेखिये प्रसगल तुम्हारी तारना यो मन हर के नाम पधार ना रहाओ खेन में ताप उतापे कुदरत तब करते के कारना ताम क्रोध लोभ चूड़ निंदा साधु संग बिदारना नाम जत मन निर्मल होवे सुखे सुख गुदारना भगत शरण जो आवे प्राणी इस ईहा उहा ना हारना सुख दूस मन की बिरदा तुम ही आगे सारना तू दाता सबना जिया का अपन की आप पालना अनकबार और जन ऊपर नानक वंजे वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सदगुर प्रसाद दर्शन पेड़त पाप सब नस हरस्यों दे मलाई मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते हुए सखाई रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत तूर मुख लाई पद पुनीत किए खिन पीतर अज्ञान अंधेर वंजाई कारण कारण समरथ स्वामी नांग तिसरनाई बंधन तोड़ चरण कम दरड़ाए एक शब्द लिवलाई अंध कू बिखिया ते काढ़ियो साच शब्द बने आई जन्म मरण का सिरसा चूका बहौड़ कथो ना ताई नाम रसायन इव मनाराता अमृत पी त्रिवताई संत संग मिल कीर्तन गाया नित लवसे आ जाई पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिन आन ना पाई नाम धन पाया वडभागी नानक नरक न जाई काल सियाण पुगतना मेरी पूरे गुरु कमाई जत स संजम सुच गए सोई आपे करे कराई पुत्र कलत्र मां बिखिया मैं गुर साते लाए तराई अपने जीते आप संभाले आप लिगे लड़लाई साज तर्म का बेड़ा बंधया अवजल पार पवाई बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूर्त अजोनी संभो कल अंधकार दीपाई अंतर जामी जीवन का दाता देखत तृप्त अगाई एकंकार निरंजन निरपो सब जलत रहया सुमाई भगत दान भगता को दीना हर नानक जाते माई राम कली महला पंजवा श्लोक सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक मन तारा ताराम प्यारे हर प्रेम भगत बन आई संतो सदगुर खेप निवाही संतो हर नाम लाहा दास को दिया सगली त्रिसन ओलाही संतो रहाओ खोजत खोजत लाल एक पाया हर कीमत पहनना जाई संतो
ਚਰਨ ਕਮਸਿਓ ਲਾਗੋ ਧਿਆਨਾ, ਸਾਚੇ ਦਰਸ ਸਮਾਈ ਸੰਤੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ ਪਏ ਨਿਹਾਲਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ ਸੰਤੋ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਰਵਿਆ ਸਭ ਅੰਤਰ, ਕਤ ਆਵੇ ਕਤ ਜਾਈ ਸੰਤੋ, ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ, ਸਭ ਜੀਆਂ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਸੰਤੋ, ਆ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈਏ, ਪੂਰਿਆ ਸਭ ਠਾਈ ਸੰਤੋ, ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਸੁਤ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸੰਤੋ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਨ ਬਕਰਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੀ, ਭੂਮਣ ਕੇਰ ਮਹਤ ਬਿਗੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ, ਰਗਾਓ ਅੰਤਰ ਸੂਖਾ ਬਾਹਰ ਸੂਖਾ, ਹਰ ਜਾ ਮਲਨ ਪਏ ਸੁਟਾਰੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਲਾਗੇ ਤਨੇ ਨਿਵਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਉਧਰੇ ਸੰਤ ਪਰੇ ਹਰ ਸਰਣੀ, ਪਰ ਬਿਨਸੇ ਮਹਾਂ ਅੰਕਾਰੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਇਓ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਇਕ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਅਧਾਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਣਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋ ਤੁਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ, ਰਵਿਆ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ, ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਕਰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰੀ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਨਾਨਕ ਵਡਿਆਈ, ਤੇਰਿਆਂ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੇ ਨਾਰੀ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ, ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨਵ ਦੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ।

कथ्यो अकथ कहानी। ए मन चंचला चितराई किने न पाया, चितराई न पाया किने। तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी, जेन एद परम फुलाया। माया ता मोहनी तने कीती, जिन ठगोली पाईया। कुर्बान कीता से विटो, जिन वो मीठा लाया। कहे नानक मन चंचल चितराई किने न पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, यो कुटंब तू जे देखदा। चले नाही तेरे नाले, साथ तेरे चले नाही। इस नाल क्यों चित लाई है, ऐसा काम मूले ना कीचे। जित अंत पछोताई है, सगुरु का उपदेश सुन तू। होवे तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे। तू सदा सच संभाले, अगम अगोचर तेरा अंत न पाए।

काटन पय हरण तूसागर हर राय दीन दयाल दुख पंजनो नानक नीत त्याय संत जस गावोड़ पागी हो कर कृपा भगवंत जियो रुत्ती महामूर्त कड़ी गुण उचरित सोभावंत जियो गुण रंग राते तन तेजन जिनी एक मन त्याया सफल जन्म पया तिनका जिनी सो प्रापाया ओ निदान ना तुल किरिया हर सर्व पापा हंत जियो बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो श्लोक उदम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सा तुद पावसी नानक नाम आधार संत सरण साजन परो स्वामी सिमर अनंत तू केते हरियाथिया नानक जप भगवंत संत रुत सरस बसंत महा चेत वैसाख सुख महा जियो हर जियो नहो मिलिया मौलिया मंतन सह जियो कर नहो नेचल अंध सखिये चरण कमल पर भुलिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमूलिया वड़पाग पाया दुख गवाया पई पूर्ण आस जियो बिनवंत नानक शरण तेरी मिटी जम की त्रास जियो श्लोक सा संत मिन प्रमोई करती कर्म अनेक कोमल बंधन बांधिया नानक कर्म है लेख जो पाने से मिलिया विछोड़े पिया नानक प्रसरणागति जाकावड़ प्रताप संत ग्रीख मरुत अत गाखड़ी जेठ अखाड़े काम जियो प्रेम शोध दुहागणी दृष्ट न करी राम जियो न दृष्ट आवे मर्त हावे महागार्भ मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया कर पाप जोनी पय पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओट तेरी राग पूर्ण काम जियो श्लोक सदा लागी संग प्रीत में एक तिल रहन न जाए मन तन अंतर राव रहे नानक सह सुपाए कर गैली नी साजने जन्म जन्म के मीत चरणे दासी कर लई नानक प्रभित चीत संत रुत बरस सुहेलिया सावन भादवे आनंद जियो तन उन उठ जल थल पूरिया मकरंद जियो प्रापुर रहया सर्वठाई हर नाम नावनिध गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी और समूहा सब तरे प्रे रंग जागे नय छिद्र लागे किरपाल साधबक सिंध जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो श्लोक आस प्यासी मैं फिरो ता पेखो गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रा मेलन हार बिन मिलबे सांत न उपजे तिल पल रहन न जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए संत रुत सरद अडंबरो असू कतके घर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत का मिल गए गुण तस जियो बिन कंत प्यारे नह सूख सारे हार कंगन त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती साध बिन जैसे तना ईत पुत दैदस अलोकन मन मिलन की प्या प्यास जियो बिन वंत नानक तार कृपा मिल हो प्रा गुण तस जियो श्लोक जलम जी शीतल पय मन तन उपजी सा।

ज्ञान ने तीर्थ नहाइए तो फल पाइए मैल न लागे काई गोरख पूत लोहारी पा बोल जोग जुगत विदसाई हाटी बाटी नींद न आवे पर कर चित ना डुलाई बिन नावे मन टेक न टेकई नानक पूख न जाई हाड पटन कर गुरु दिखाया थे जे सच वापारो खंडत निंद्रा अल्प आहारं नानक तत् विचारो दर्शन पेख करो जो गिंद्रा मुंद्रा चोली खिंता बारह अंतर एक सरेव हो खड़ दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाइए पुरखा बहुत चोट ना खाइए नानक बोले गुरमुख बूझे जोग जुगत इव पाइए अंतर शब्द निरंतर मुंद्रा हो में ममता दूर करी काम क्रोध अहंकार निवार गुर कै शब्द सो समझ परी खिंता चोली पर पुर रहे नानक तारे एक हरी सच।

मन जा गोटी सत संतोख संजमख नाल नानक गुरमुख नाम समाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बार जुगता कमन सो आवे कमन सो जाए कमन सो तिरफन रहा समाए घड़ घड़ गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बार शब्द सो जुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख सा समाए क्यों कर बादा सरपन खद क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा क्यों तत् विचार ऐसो गुरु हमारा दुर्मत बादा सरपन खद मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुरु मिले अंधेरा जाए नानक हो में मेड़।

कथिय ले सुन कहां कर वासो ज्ञान की मुद्रा कमन कथिय ले घट घट कमन निवासो काल का ठीका क्यों जलाई अले क्यों निरभो कर जाइए सहे संतु का आसन जाने क्यों शेदे बैराइए गुर के शब्द होमे बिख मारे ता निरकर हो गए वासो जिन रच रचिया तेस शब्द पछाण नानकता का दासो कहां ते आवे कहां यो जावे कहां यो रहे सुमाई एस

हुक्मे रहे समाई पूरे गुरते साज कमावे गात मित सबदे पाई आद कौ बिस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले धड़कड़ साचा सर्ब जीया गुर बचनी अवगत समाइये तत् निरंजन सहज लहे नानक दूजी कारना करनी सेवे सिख सो खोज लहे हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणे जी जुत सा जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगतो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सदगुर परचे परम पद पाईए साचे शब्द समाए लिया एक को सच एका जाने होमे दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणे अंतर कमल प्रकाश थिया जीवित मरे ता सब कुछ सूझ है अंतर जाने सर्ब दया नानक ताको मिले वडाई आप जाने सर्ब जिया सच उपजे सच समावे साचे सूचे एक मया झूठे आवे ठवर ना पावे दूजे आवा गौण पया आवा गौण मिटे गुर शब्दी आपे परखे बगसलया एक आवेदन दूजे व्यापी नाम रसायन विसरया तो बुझे जिस आप बुझाए गुर कै सब सो मुक्त पया नानक तारे तारण हारा होमे दूजा पर हरिया मनमुग फूले जम की कान पर कर जो है हाने हान मनमुख परम पवे बेबान वे मार्ग मूस मंत्र मसान शब्द न चीने लवे कुबान नानक साचरते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावे गुरमुख बाणी अगड़ कढ़ावे गुरमुख निर्मल हर गुण गावे गुरमुख पवित्र परम पद पावे गुरमुख रोम रोम हर त्यावे नानक गुरमुख सा समावे गुरमुख परचे वेद विचारी गुरमुख परचे तरिये तारी गुरमुख परचे सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचे अंतर विद जानी गुरमुख पाइये अलख अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथे विचार गुरमुख निभगे सब परवार गुरमुख जपिये अंतर प्यार गुरमुख पाइये शब्द अचार शब्द भेद जाने जानाई नानक होमे जाल समाई गुरमुख धरती साचे साजी इसमें ओपत खपत सो बाजी गुर के शब्द रपे रंग लाए साजर तो पास्यों कर जाए साज शब्द बेन पत नहीं पावे नानक बिन नावे क्यों साच समावे गुरमुख अष्ट सिद्धि सा बुद्धि गुरमुख पवजल तरगे सच सुधि गुरमुख सार अवसर विद जाने गुरमुख परविरत निर्विरत पछाण गुरमुख तारे पार उतारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे नामे राते होमे जाए नाम रते सच रहे समाए नाम रते

ता सब तीर्थ गहे, ओ तपा कैसे परमगत लहे, गुर प्रसादी को सच कमावे, नानक सो तपा मोखंतर पावे महला तीजा, सो तपा ये ओ तप का ले, सदगुर नु मिले शब्द समाले, सदगुर की सेवा यो तप प्रवान, नानक सो तपा दर्घ पावे मान पौड़ी, रात दिन उपायन संसार की वर्तन, गुरमति कड़चा नना आनेर बिनासन, हुक्मे ही सब साजियन रव्यासा वण त्रेण, सब कुछ आपे आप है गुरमुख सदा हर पाण, सब देखी सोजी पई सच्चे आप बुझाई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला तीजा, अभ्यागत ए न आखियन जिनके चित में परम, ते दे दिते नानका ते हो जेगा तर्म, अपय निरंजन परम पद ताका भूखा होए, जिसका पूजन नानका विरला पाए कोए। महला तीजा, अभ्यागत ए न आखियन जे पढ़ कर पूजन करेन, उदरे कारण अपने बैले पेख करेन, अभ्यागत से ही नानका जी आत्म गौन करेन, पाल लहन सो अपना निरकर रहन करेन, पौड़ी अंबर तरतब छोड़ेन वे सच्चा असराओ, घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ, सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच सुनाओ, सच्चा आप तगत सच्चा बै सच्चा करे न्याओ, सब सचो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला तीजा, रैनायर महाय अनंत है ऊड़ी आवे जाए, भाणे चले अपने बहुती लय सजाए, राय नायर में सब किस है कर्मी पल्ले पाए, नानक नौनद पाई है जे चले तसे रजाए। महला तीजा, है जे सतगुर ना सेवे हो विच होमे जन्म विनाश, रसना हसना चखे हो कमल न होयो परगास, बिख खादी मन मुख मोआ माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम वेण त्रिग जीवन त्रिग वास, जा आपे नदर करे पर सच्चा ता हो वेदा सुनदास, ता अनदन सेवा करे सदगुरु की कभे न छोड़े पास, जो जल में कमल अलिप तो वर्त है त्यो विचे गिरे उदास, जन नान करे कराया सबको क्यों पावे ते भर गुण तास, पौड़ी छत्ती जुग गुबार सा आपे ग्रंथ कीनी, आपे सृट सब साजियन आप मत दीनी, सिमरत शास्त्र साजियन पाप पुन ग्रंथ गणीनी, जिस बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतीनी, तबे आपे आप वर्तदा आपे बख्श मिलाई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला तीजा, यो तन सबो रत है रत बिन तन न होए, जो से रते अपने तेन तन लोभ रत न होए, पय पय तन खीन होए लोभ रत विचो जाए, ज्यों बैसंतर तात सुध होए त्यों हरका पाओ दुर्मत महल गवाए, नानक तेजन सोने जो रते हारंग लाए। महला तीजा, राम कली रामन वसया ता बनया सीगार, गुर के शब्द कमल बिरसया ता सौंपया भगत भंडार, परम गया ता जा गया चूका अज्ञान अंधार, देश नु रूप अत अगला जिस घर नाल प्यार, सदा रवे तेरे अपना तोबावंती नार, मनमुख सीगार ना जाननी जसन जन्म सवहार,
फिर घर भगती सीगार कर निज जम्मे होए खुवार सहे सारे विच शोभ ना पाए नी अगे जे करे तो जाने करतार नानक सच्चा एक है दो बच गए संसार चंगे मंदे आप लायन सो करन जे आप कराए करतार महला तीजा बिन सदगुर सेवे सात न आवई दूजी ना ही जाए जे बो तेरा लोचिए बिन कर्मा पाया ना जाए अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुवाए तिन जम्मण मरण ना चुकई हौमे विच दुख पाए जिनी सतगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना हो गई ना ओए दुख सुखा है नानक गुरमुख उबरे सच्चे शब्द समागे पौड़ी आप अलिप्त सदा रहे होर तंदे सब तावे आप निचल अचल है होर आवे जाव है सदा सदा घर त्याई है गुरमुख सुख पाव है निकर वासा पाई है सच सिफत समाव है सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द बुझाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा सच्चा नाम त्याए तू सबो वरते सच नानक हुक्मे जो बुझे तो फल पाए सच कथनी बदनी करता फिरे हुक्म ना बूझे सच नानक हर का पाणा मन्ने तो भगत होए विण मन्ने कच्चन कच्च महला तीजा मनमुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार ओए थाओ कथाओ ना जाननी उन अंतर लो विकार ओए अपने स्वाए आए बहे गल्ला करे ओ ना मारे जम जिंदार अगे दरगे लेखे मंगे मार खुआर कीचे कूड़ियार ए कूड़े की मल क्यों उतरे कोई कड्डो यो विचार सतगुर मिले त नाम दड़ाए सब केल कटन हार नाम जपे नाम आराध्य ते जन को करो सब नमस्कार मलकूड़ी नाम उतारियन जप नाम हुआ सचियार जन नानक जिस दे ए चलत है सो जीवो देवन हार पौड़ी खुद जेवड़दाता नाहे किस आग सुनाई है गुर प्रसादी पाए जिथो होमे जाइए रस का सादा बार सच्ची वडे आईए जिसनु बख्शे तिस दे आप लय मिलाइए तट अंतर अमृत रखियोन गुरम किसे पे आई वाहो वो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा बाबाणियां कहानियां उत सुपुत करेन जे सदगुर पावे सो मन लैन सेई कर्म करेन जाए पुछो सिमरत सास्त प्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चे लाए सच लगे सदा सच समालेन नानकाए से प्रवाण पए जे सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिना का अंगला सिख पी अंधे कर्म करेन ओए पाणे चलन अपने निर झूठो झूठ बोलेन कूड़ कु सत कुमांदे पर निंदा सदा करेन ओए आ डुबे पर निंदगा सगले कुल डोबेन नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन पौड़ी सब नदरी अंदर रखद जेती सिट सब कीती एक कूड़ कु सत लायन मनमुख विभूति गुरमुख सदा त्याई है अंदर घर प्रीति जिन को पोते पुन है तिन वात से पीति नानक नाम त्याई है सच सिफत सुनाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਤੀ ਪਾਪ ਕਰ ਸਤ ਕਮਾਹੇ, ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕਰ ਦੇਵਣ ਜਾਹੇ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਖਟੇ ਭਾਉ, ਭਾਵੇ ਆਵੋ ਪਾਵੇ ਜਾਓ। ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋਏ, ਆਪੋ ਆਪੇ ਪੂਜਾ ਹੋਏ। ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਕੈ ਭਏ ਨਿਆਏ, ਫੇਰੇ ਤਸਬੀ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ। ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ ਸੁਣਾਏ। ਤੁਰਕ ਮੰਤਰ ਕੰਨ ਰੇ ਸੁਮਾਵੇ, ਲੋਕ ਮੁਹਾਵੇ ਚਾੜੀ ਖਾਵੇ। ਚੌਂਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਹਿੰਦੂ ਵੇਖੋ ਕੋਏ। ਜੋਗੀ ਗਿਰਗੀ ਜਟਾ ਬੇਪੂਤ, ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਰੋਵੇ ਪੂਤ। ਜੋਗ ਨ ਪਾਇਆ ਜੁੱਤ ਗਵਾਈ, ਕਿਤ ਕਾਰਨ ਸਿਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਲਕਾ ਇਹੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆਪੇ ਆਖਣ ਆਪੇ ਜਾਣ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਸੂਜ ਨੇਊ ਪੜਗਲ ਪਾਵੇ। ਸੂਦ ਪਾਏ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ, ਨਾਤਾ ਤੋਤਾ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਵਿਣ ਗੁਰ ਪੀਰੇ ਉਹ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ, ਰਾਉਦ ਸਾਏ ਉਥੇ ਕੋ ਜਾਏ। ਕਰਣੀ ਬਾਜੋਂ ਪਿਸਤ ਨ ਪਾਏ, ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਘਰ ਜੁਗਤ ਦਸਾਈ। ਤਿਤ ਕਾਰਨ ਕਨ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ, ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਏ ਫਿਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਾਟਾਊ। ਚੀਰੀ ਆਈ ਟਿਲ ਨਾ ਕਾਊ, ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣੇ। ਹੋਰ ਫੱਕੜ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨੇ, ਸਭਨਾ ਕਾਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ। ਕਰਣੀ ਬਾਜੋਂ ਤਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ, ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਆਖੀਏ। ਕਾਇਆ ਕੋੜ ਗੜ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਜਵੇਰੀ, ਗੁਰਮੁਖਰ ਨਾਮ ਪੜ। ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਸਰੀਰ ਅਤ ਸੋਹਣਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜ। ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਖਵਾਇਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨਿਤ ਕੜ। ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪਾਇਆ ਜਾਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾ ਸਦੁਖੀਆ ਨਾ ਸਸੁਖੀਆ, ਨਾ ਸਤ ਪਾਣੀ ਜੰਤ ਫਿਰ, ਨਾ ਸਤ ਮੂਡ ਮੁਡਾਈ ਕੇਸੀ। ਨਾ ਸਤ ਪੜਿਆ ਦੇਸ ਫਿਰ, ਨਾ ਸਤ ਰੁੱਖੀ ਬਿਰਖੀ ਪੱਥਰ। ਆਪਤ ਸ਼ਾਵੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ, ਨਾ ਸਹਸਤੀ ਬੱਧੇ ਸੰਗਲ। ਨਾ ਸਤ ਗਾਈ ਕਾਉ ਚਰੇ, ਜਿਸ ਹਸ ਸਿੱਧ ਦੇਵੇ ਜੇ ਸੋਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਤ ਆਏ ਮਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੋ ਮਿਲੇ ਵਡਾਈ। ਜਿਸ ਕੜ ਪੀਤਰ ਸ਼ਬਦ ਰਵੇ, ਸਭ ਕੜ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ। ਜਿਸੇ ਖੁਆਈ ਤਿਸ ਕੌਣ ਕਹੇ, ਜਿਸੇ ਦਿਖਾਲਾ ਵਾਟੜੀ ਤਿਸੇ ਭੁਲਾਵੇ ਕੌਣ। ਜਿਸੇ ਭੁਲਾਈ ਪੰਧ ਸਿਰ, ਤਿਸੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕੌਣ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਜੋ ਨਿਗਰੋ ਕਰੇ, ਜਬ ਤਬ ਸੰਜਮ ਪੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ, ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ। ਬੋਲੇ ਈਸਰ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਅਵਧੂਤੀ ਜੋ ਤੂਪੇ ਆਪ, ਪੀਖਿਆ ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਸੰਤਾਪ। ਅਵਹਠ ਪਟਣ ਮੈਂ ਪੀਖਿਆ ਕਰੇ, ਸੋ ਅਵਧੂਤੀ ਸੇ ਪੁਰ ਚੜੇ। ਬੋਲੇ ਗੋਰਖ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਉਦਾਸੀ ਜੇ ਪਾਲੇ ਉਦਾਸ, ਅਰਧ ਉਰਧ ਕਰੇ ਨਿਰੰਜਨ ਵਾਸ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਪਾਏ ਗੰਡ, ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਕਾ ਪੜੇ ਨਾ ਕੰਧ। ਬੋਲੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਪਾਖੰਡੀ ਜੇ ਕਾਇਆ ਪਖਾਲੇ, ਕਾਇਆ ਕੀ ਅਗਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰ ਜਾਲੇ। ਸੁਪਨੇ ਬਿੰਦ ਨਾ ਦੇਈ ਝਰਣਾ, ਇਸ ਪਾਖੰਡੀ ਜਰਾ ਨਾ ਮਰਣਾ। ਬੋਲੇ ਚਿਰਪਟ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਪੈਰਾਗੀ ਜੇ ਉਲਟੇ ਬ੍ਰਹਮ,
गगन मंडल में रूपे थम आए निस अंतर रहे ध्यान ते बैरागी सतसुमान बोले परतर सत स्वरूप परम तत् मैं रेखना रूप मुखला पहला क्यों मरे मंदा क्यों जीव है ज्योत तन पड़ाए क्या खाजे पुत आसत नास्त एक को नाओ कौ सो अखर जित रहे हे आओ तूप शाम जे सम कर सह।

समाए काहे भिख्या मंगण जाए पौड़ी हर मंदर सोई आखिए जिथों हर जाता मान दे गुरबच नहीं पाया तब आत्म राम पछाता बार मूल ना खोजिए कर माए विधाता मनमुख हर मंदर की सार ना जाननी तिनी जन्म गवाता सब में एक वर्तदा गुरसवधी पाया जाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला तीजा मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना मूर्ख के क्या लक्षण है क्या मूर्ख का करना मूर्ख हो जे मुग्ध है अहंकारे मरना एत कमाने सदा दुख दुख ही मैं रहना अत प्यारा पवे खूह क्यों संजम करना गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना हर नाम जपे आप उधरे ओस पिछे डुबदे पी तरना नानक जोत पावे सो करे जो दे सो सहना महला पहला नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही तलबा पोसन आकिया बाकी जिना रही अजराइल फरेश्ता होसी आए तई आमन जान न सुजई पीड़ी गली पई ऊड़न कुट्टे नानका ओड़क सच रही पौड़ी हर का सब शरीर है हर रब रहे सब आपे हर की कीमत ना पवे किस कहन ना जापे गुर प्रसाद दी साराई है हर पंक्ति रापे सब मन पन हरिया होया अहंकार गवापे सब किस हर का खेल है गुरमुख से बुझाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला पहला सहंसर दान दे इंदर रो आया परसराम रोवे कर आया अजाय सुरोवे पीख्या खाए ऐसी दरगह मिले सजाए रोवे रामन काला पया सीता लखमण विछड़ गया रोवे देसर लंक गवाए जे सीता आंधी डौरू वाए रोवे पांडव पए मजूर जिनके स्वामी रहत हदूर रोवे जनमेजा खोए गया एक ही कारण पापी पया रोवे शेख मसायक पीर अंतकाल मत लागे पीड़ रोवे राजे कन्न पड़ाए कर कर मांगे पीख्या जाए रोवे किरपन संचे तन जाए पंडित रोवे ज्ञान गवाए बाली रोवे नाए पतार नानक दुखिया सब संसार मन्ने नाओ तो ही जन जाए औरी कर्मना लेखे लाए महला दूजा जब ताप सब कुछ मन्ने अवकारा सा बाद नानक मन्या मन्निए बुझगे गुर प्रसाद पौड़ी काया हंस तुरमेल करते लिख पाया थमे गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया गुण गावे गुण उच्चर गुण माये सुमाया सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया सब किस आपे आप है आपे दे वड्याई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला दूजा नानक अंधा होए कै रत्ना परखण जाए रत्ना सार ना जानई आवे आप लखाए महला दूजा रत्ना केरी गुसली रत्नी खोली आए वखर तय बन जा रहा दोहा रही सुमाए जिन गुण पल्ले नानका मानक बन जैसे रत्ना सार ना जानई अंधे वत्ते लोए पौड़ी नौ दरवाजे कया कोट है जिसमें गुप्त रखी जय वज्रक पाट ना खुलनी पुर शब्द खोली जय अनखद वाजे तुन वज दे पुर शब्द सुनी जय तेदकड़ अंतर चानना कर भगत मिली जय सब में एक वर्तदा
ਜਿਨੇ ਆਪੇ ਰਤਨ ਰਚਾਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਅੰਧੇ ਕਹਿ ਰਾਏ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਏ, ਹੋਏ ਸੁਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ ਤੋ ਕਿਉ ਉੱਜੜ ਪਾਏ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਸਾਹਿਬ ਅੰਧਾ ਜੋ ਕੀਆ ਕਰੇ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਏ, ਜੇਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ, ਜੇ ਸੋ ਆਖੇ ਕੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਵਸਤ ਨਾ ਜਾਪਈ ਆਪੇ ਵਰਤੋ ਜਾਣ, ਨਾਨਕ ਗਾਹਕ ਕਿਉਂ ਲਏ ਤੱਕੇ ਨਾ ਵਸਤ ਪਛਾਣ। ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਹੋ ਕਿਉਂ ਅੰਧਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਹੁਕਮੋ ਅੰਧਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁੱਝਈ। ਅੰਧਾ ਕਹੀਏ ਸੋਏ ਪੌੜੀ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗੜ ਕੋਟ ਹੈ ਸਬਦ ਸੰਤਰ ਦੇਸਾ, ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈਨ ਹਮੇ ਪਰਵੇਸਾ, ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਟ ਸਾਜੀਆਂ ਆ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਸਾ। ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਸਜ ਪ੍ਰਗਟੀ ਏਸਾ, ਸਬਕੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਸੋਜੀ ਪਾਈ। ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਾਹਮਣ ਰਾਤ ਹਾੜ

जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कटे हो मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संयोग महला पंजवां एक सज्जन।

सुंदर बचन तुम सुनो शबीली, पिरतेड़ा मन साधारण, दुर्जन से तीन हो रचायो, दस विखा मैं कारण, ऊनी नाही चूनी नाही, नाही किसे विगुणी, फिर शैश पीला छड गवायो, दुर्मल कर्म विगुणी, ना हो फुली ना हो चुकी, ना मैं नाही दूसा, जित हो लाई तित हो लगी, तू सुन सच संदेशा, साई सुहागण साई भागण, जय फिर कृपा तारी, फिर अवगुण के सब गवाए, गल से ती लाए सवारी, कर्महीन तन करे बेनंती, कद नानक आवे वारी, सब सुहागण माणे रलिया, एक देव रात मुरारी, महला पंजवा, ताहि मन तू डोलता, हर मनसा पूर्ण हार, सतगुर पुरख ते आए तू, सब दुख वसारण हार, हर नामा आराध मन, सब किल विख जाए विकार, जिन को पूर्व लिखिया तिन

करे सुध देख, नानक जिस तुरमस्तक हो वे लिखया तिस सतगुर नाल सुनेगा। अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस किरपाल होवे तिस हृदय वसेगा। आमन जाना तिसका कटी है सदा सदा सुख होहा पौड़ी। जो तु पाणा जंत सो तुद बुझई, जो तु पाणा जंत तो दरगे सिजई। जिसनु तेरी नदर होमे तिस गई, जिसनु तु संतुष्ट काल माल तिस खई। जिसके स्वामी वल निरपो सो पई, जिसनु तु किरपाल सच्चा सो थई। जिसनु तेरी माया ना पोहे अगनई, तिसनु सदा दयाल जिन गुरते मत लई। सलोक महला पंजवा, कर किरपा किरपाल आपे बख्श लए। सदा सदा जपी तेरा नाम सतगुर पाए पए। मन तन अंतर वस दुखा नास होए, हथ दे आप रख व्यापे पौ ना कोय। गुण गावा दिन रहन एते कम लाए, संत जना के संग होमे रोग जाए। सर्ब निरंतर खसम एको राव रहया, गुर प्रसादी सच सचो सच लहया। दया करो दयाल अपनी सिफत देहो, दर्शन देख निहाल नानक प्रीत एहे। महला पंजवा, एको जपके मने माहे, एक की सरणाए। एक स्यों कर पिरहड़ी दूजी नाही जाए। एको दाता मंगिए सब कुछ पल्ले पाए। मन तन सास गिरास प्रभ इको एक त्याए। अमृत नाम निधान सच गुरमुख पाया जाए। वड़पा

मन तन हिरदे सिमर हर आड़ पैर गुण गाओ उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सच्चा ए सुआओ जन पदार्थ सबर होए मन में लायो पाओ सूग सहज आनंद कणा प्रभ जपत्या दुख जाए नानक नाम जपत सुख उपजे।

गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन पर जियो पिंड था दिया इसकी पाओ भक्त नहीं साधी रघाव पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटे आवा गवन होत है फुन फुन यो प्रसंग न टूटे जे कर कथा होत हर संतन एक निमकना की नो मैं फेरा लंपड़ चोर दूत मतवारे तीन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मस्तर ए संपे मोह माही दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपनं तरनाही दीन दयाल के पाल दमुदर भगत बछल पैहारी कहत कबीर पीर जन रखो हर सेवा करो तुम्हारी जे सिमरन

ऐसो दान नित नित है कीजे, आत्म जो निर्मायल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तऊ ना पूजे, मने न कीजे रोस, जमे न दीजे दोस्त।

प्रस्वामी तुम दुष्ट तारे हरण के नट मोहल्ला चौथा मेरे मान जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीशर हर त्यायो जन।

क्या भाव है, मन प्यास बहुत दर्शावे रहाव, सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवे, कृपा करज पुरख विधाते सो सदा सदा तू त्यावे, कवन योग कवन ज्ञान त्याना कवन गुणी रीझावे, सोई जान सोई निज भगता जिस ऊपर रंग लावे, साई मत साई बुद्ध स्यानप जित निमक न प्रभिसरावे, संत संग लगे सुख पायो हर गुण सदगी गावे, देखो अचरज महा मंगल रूप किस आन नहीं दिष्टावे, कहो नानक मोर्चा गुर लायो।

साधु तूर करो नित मजन सब केलबिख पाप गवायन पूर्ण पूर रहे कृपा निध काट काट दृष्ट सुमायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुलना लायन दो कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दसन दास दसायन नट महला पंजवा मेरे सर्वस नाम निधान।

सदगुर ज्ञान मज्जन गय नीको मिल कल मल पाप उतारे रघाओ। संगत का गुण बहुत अधकाई परसुआ गण उधारे परस न परस फय कुबजा कहो लय बैकुंठ सुधारे।

साधु पुरख साध जन पाए, एक बिनो करो गुर प्यारे, राम नाम तन पूंजी देवो सब तृष्णा पूख निवारे। पते पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन, एक इंद्री पकर संघारे, पंच पूत सब लगाए देही पुर सतगुर पाप निवारे। शास्त्र वेद सोध सोध देखे, मुन नारद बचन पुकारे, राम नाम पढ़ो गद पावो सत संगत गुर निहतारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारे, मेर सुमेर मोर बो नाचे जब उनमें कान कन हारे। सागत को अमृत बो सिंचो सब डाल फूल विस्कारे, ज्यो ज्यो निवे सागत नर सेती छेड़ छेड़ कड्डे बिखकारे। संतन संत साध मिल रही है गुण बोले परे पुकारे, संत संत मिले मन बिसे जो जल मिल कमल सवारे। लोभ लहर सब स्वान खलक है हल्के सबे बिगारे, मेरे ठाकुर कह दीवान खबर होई गुर ज्ञान खड़ग ले मारे। राख राख राख प्रा मेरे मैं राखो कृपा तारे, नानक मैं तर अवर न काई मैं सतगुर गुर निस्तारे। शक्का एक राग माली गौड़ा महला चौथा, एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरपौ निरवैर, अकाल मूर्त अजूनी सैपं गुर प्रसाद। अनक जदन कर रहे हर अंत नहीं पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदे।

प्रहलाद जन हर नाग पकड़िया, हर राखली उतराया, हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया। ओ जन्म मर निवार ठाकुर हर गुरमति प्रपाया, हर पतत पावन नाम स्वामी ओ भगत पंजन गाया। हर हार हर उतारे जन नानक नाम समाया, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रखाओ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिले घर प्रवजाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिनी घर प्रापाया, तिन पूछो घर की बाता, पाए लगो निद करो जुदरिया, हर मिलो कर्म विदाता, लिलाड लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्र आए मिले सुख पाया, सब केलबुख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंक पाये वडभागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, सब सिद्ध साधक मुनजना, मन पावनी घर त्यायो, अपरम्परो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो, रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेत्यो हर रायो, हरियान मिल्यो सदगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रा मस्त के तुर लिखिया, गुरमती घर लिवलायो, पांच शब्द दर गए बाजिया, हर मिल्यो मंगल गायो, पतत पावन नाम नर हर, मंद भागिया नहीं पायो, ते गर्भ जो नी गालिये, ज्यो डोन जले गलायो, मत दे घर प्र अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो, हर राम नाम में रहो लागो, जन नानक नाम समायो, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगास पया गुर पाया, हर जप्यो परम पो भागा रगाओ, पय पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, किल बिख खीन पय सांत आई, हर उतारियो वडभागा, मान मुख रंग कुसुंभ है कछुआ, ज्यों कुसुम चार दिन चागा, खिन मैं बिनस जाए परताप, दंड तरमरा एका लागा, सत संगत प्रीत साध अत गूढ़ी, जो रंग मजीठ बो लागा, काया कापर चीर बो फारे, हर रंग न लहे सुपागा, हर चारो रंग मिले गुर शोभा, हर रंग चलू ले रंगा, जन नानक तिनके चरण पखारे, जो हर चरणी जन लागा, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, मेरे मान भाज हर हर नाम गोपाला, मेरा मातन लीन पया राम नामे, मत गुरमत राम रसाला, रहाओ गुरमत नाम त्यागे हर हर, मन जपगे हर जपमाला, जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया।

कोय पूरे या सगल मंडल एक स्वामी सोए करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ बलिहार जाए सदा नानक देव अपना नाओ माली गौड़ा बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन तन ओ राम बेन बाजे मदर मदर तुन अनहत गाजे रहाओ तन तन मेघा रोमावली तन तन कृष्ण ओढ़े कामली।

तेरो बाप माधो तू तन केसो सामलियो बीठ लाए रखाओ कर तरे चक्कर बैकुण ते आए गृहस्थी के प्राण उधारी अले दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारी अले गोतमनार अहल्या तारी पावन केतक तारी अले ऐसा अधम अजात नाम दियो ताओ शरणागत आई अले सबे कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे रघाओ एकल माटी कुंचर चीटी भाजन गए बो नाना रे अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे एकल चिंता राख अनंता और तजो सवया सारे परमे नामा पहने कामा को ठाकुर को दासारे राग

खाए ता पीसन जाओ, पखा फेरी पैर मलोवा, जब तरह तेरा नाओ, लून खरामी नान कलाला, बगसे तुद बड़े आई, आद जुगाद दया पद दाता, तुद विन मुक्त न पाई, मारू मोहल्ला पहला, कोई आखे पूतना, ओ कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा, भया देवाना साका नानक बौराना, हों हर बिन अवर न जाना रखाओ, तौ देवाना जानिए या पै देवाना होए, एक ही साहेब बारा दूजा अवर न जाने कोए, तौ देवाना जानिए या एकाकार कमाए, हुकम पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण पकाए, तौ देवाना जानिए या साहेब तरे प्यार, मंदा जाने आप को अवर पला संसार, मारू मोहल्ला पहला, इहो तन सरब रहे।

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र है थावा बाबा देवसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रघाव बुरा पला किस आपस ते जाने ए सगल विकारा यो फरमाया खजम का हुआ वरत यो संसारा इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लिव लागी दुबदा तदे बेनासी जुत पाणा सो सतकर मानिया काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मन अवमाना तास तास धर्म राय जपत है

एक सच्चा सब सेम दी तुर पाग मिला बाग होए। गुरमुख मिले से ना विछड़े पावे सच सोए। एक भगती सार ना जाननी मनमुख परम भुलाए। ओना विच आप वरतदा करना किशु ना जाए। जिस नाल जोर ना चलई खले कीचे अरदास। नानक गुरमुख नाम मन वसै ता सुन करे साबास। मारू महला तीजा मारू ते सीतल करे मनूरहों कंचन होए। सो सच्चा सालाइए तिस जीवड़ अवर ना।

दान आए, त्याग्यो सगला मान महत्ता, दास रेण शरणाए, कहो नानक हर मिल पे एक महा अनंत सुख पाए। मारू महला पंजवा, कवन थान तीरियो है नामा, कवन बस अहंकारा, कवन चेन सुन ऊपर सोयो, मुक्ते सुन कर गारा। सुनो रे तू कौन कहां ते आयो, एती ना जानो केती क मुदत, चलते खबर ना पायो। रघाव सैन सीर पवन अर पानी, बजदा खिमाने प्राते, पंच तत मिल पयो संयोगा, इन मैं कवन दोराते। जिन रच रचिया पुरख विधाते, नाले हो में पाई, जन्म मरण उसी कौहाय रे, ओहा आवे जाई। वर्ण चेन नाई किश रचना, मिथ्या सगल पसारा, पंत नानक जब खेल उजार है, तब एक एक अंकारा। मारू महला पंजवा, मान मोह अर लोभ विकारा, बियो चीत ना काले हो, नाम रतन गुण हर बनजे, लाद वखर ले चाले हो। सेवक की ओढ़ किनभी प्रीत, जीवत साहेब सेव्यो अपना, चलते रखो चीत रहाओ। जैसी आज्ञा की नहीं ठाकुर, तिस्ते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो ग्रे पीतर, उठ ओआहू को दौरियो। आज्ञा मैं पूख, सोई कर सूखा,

परम मन का सतगुर सरणी जाए। कर्म जिसको तुरो लिखिया सोई कार कमाए, पाओ लागा गोविंद स्यो काल पाई ताए। खेत मेरे जमया निखुट न कब हो जाए, पाया अमोल पदार्थो चोड़ न कत हो जाए। हो नान सुख पाया तृप्त रहे आगाए, मारू महल्ला पंजवा फूटो आंडा परम का मने पयो परगास। काटी बेरी पगे ते गुर की नी बंद खलास, आमन जान रहे हो तब तक कड़ाहा बुझ गया। गुर शीतल नाम दियो रघाव, जब ते साधु संग पया तो छोड़ गए निघार। जिसकी अटक तिसे ते छुटी तो कहाँ करे कोटवार। चूका पारा कर्म का होए ने कर्मा, सागर ते कंडे चढ़े गुर कीने धर्मा। सच थान सच बैठका सच स्वाव बनाया, सच पूंजी सच वखरो नानक कर पाया। मारू महला पंजवा वेद पुकारे मुगते पंडित, का मामन का माठा। मोनी होए बैठा एकांती हृदय कल्पन गाठा, होए उदासी

मन नहीं हर हर गावा, हरख सोग लोभ मोह रहत है, निर्मल हर के संता, तिनकी तूड़ पाए मन मेरा, या दया करे भगवंता, कहो नानक गुर पूरा मिले, ता उतरी मन की चिंता, मेरा अंतर जामी हर राया, सब के जाने मेरे जी का प्रीतम, बिसर गए बक बाया, रहाओ दूजा, मारू महला पंजवा, कोट लाख सर

माया माध मन तन संग जाता तृष्णना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सा बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सा बोला पाए ठगौरी आप भुलायो नानक कीर्तन जाए मिटायो पस पंखी भूत अर प्रेता बहुबत जोनी फिरत अनेता जय जानू तै रहन न पावे थान बिहून उठ उठ फिर तावे मन तन वासना बहुत विस्तारा अहं मेव मूठो बेचारा अनक दोह अर बहुत सजाई ताकि कीमत कहन न जाई।

दीनानाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण जिस पावे तिस ही निस्तारण अंध कूब ते काढ़न हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन धारिया महा अगन ते आप उबारिया जब तब संजम इस ते किश नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही।

तन चतर सुंदर मन नांग ते संग बीद मारू महला पंजवा चलत बैस्त सोबत जागत गुरमंत्र विचतार चरण सरण पज संग साधु।

संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पास करो कृपा मुराद माधो सुन नानक जीव है गाथ मारू अंजलि महला पंजवा कार सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद संयोग वियोग तुरो हुई हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमाएड़े जी देही विच जीव आए पया जिथे अगन पगे पड़हारे ऊर्द मुख महा गोबारे सास सास समाले सोई उथे खसम छड़ाए लाया विचों गर्भे निकल आया खसम सार दुनी चित लाया आवे जाए पुआई गे जूनी रहन न कित ही थाए पया।

माया कीमत जन्म सरायो, आराम भजन नहीं लागे ओ रखाओ। जम को डांड परे उसरी ऊपर, तब सोवत तय जागे हो, ता हो आपके पछताए, झूठ तो नाहन पागे हो। ए चिंता उपजी घट मैं, जब गुर चरणन अनरागे हो, सोफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभु जस मैं पागे हो। मारू अष्टपदिया महला पहला, कार पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद वेद पुराण कथे सुने, हारे मुनि अनेका अड़सठ तीस बौ कणा, प्रम था के पेखा, साचो साहिब निर्मलो।

ना बिना को कछ नहीं, गुरपूरे पूरी मत कीन रहाओ। अवगुण सुभर गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज सब सुख उपजे, बिन भागा तन नाहे। जिनके नाम ना मन बसे, से बादे दुख सहाहे। जिन्नी नाम सारिया, ते किताए संसार। आगे पासे सुख नहीं, गाडे लादे शार। विछड़िया मेला नहीं, तू कणु जमद्वार। अगे क्या जाना नाहे, मैं भूले तू समझाए। भूले मार्ग जो दसे, तिसके लागो पाए। गुरबिन दाता को नहीं, कीमत कहण न जाए। साजन देखा ता गल मिला, साच पठायो लेख। मुख तिमाणे तन खड़ी, गुरमुख आखी देख। तुद पावे तू मन वसे, नदरी कर्म वसेख। भूख पिया सो जे पवे,

पूरे सावास है, काटे मन पीरा, लाला गोला तनी को क्या कहो बड़े आई है, भाणे बक्से पूरा तनी, सच कार कमाइए, विछड़िया को मेल लए, गुर को बर जाइए, लाले गोले मत खरी, गुर की मत निकी, ताती सुरत सुहावनी, मानमुख मत फीकी, मन तन तेरा तू प्रभु, सज तीरक तुरकी, सच बैसन उठना, सच भोजन पाखिया, चित सच्चे वितो सच्चा, साचा रह चाखिया, साचे कार साचे रखे, गुर बचन सुपाखिया, मनमुख आरस कणो, फाथे उजाड़ी, फाथा चुगे न चोगड़ी, लाग बंद बिगाड़ी, गुर प्रसादी मुक्त होए, साचे ने ताड़ी, अनहत लाला बिदया, प्रभगेत प्यारी, बिन साचे जियो जल बलो, झूठे वेकारी, बाद कारा सब छोड़िया, साची तरतारी, जिन्नी नाम सारिया।

रघाव हे गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करो हरे तू दाता दयाल सबे सेर आहे निस दात सुमार करे चार पदार्थ लय जग जन्मया शिव शक्ति कर वास तरे लागी भूख माया मुगज जोग मुग्ध पदार्थ मोहे करे कारण पलाव करे नहीं पावे एत उद ढूंढत थाग परे काम क्रोध अंकार वे आपे कूड़ कुटां से प्रीत करे खावे पूगे सुन सुन दिख पैर दिखावे काल करे बिन गुरु शब्द न या पछाणे बिन हर नाम ना काल टरे जेता मोह में कर भूले मेरी मेरी करते शीन करे तान तन बिन सहसे सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे बिरद पया जो बन तन खिसिया ताप कंठ बरुद हो नैनो नीर टरे चरण रहे कर कंपन लागे साग त्राम न हृदय हरे तुरत गई काली हूं तौले इसे ना पावे रखियो करे विसरत नाम ऐसे दुख लाग गए जाम मार सुमारे नरक खरे पूर्व जन्म को लेख न मिटई जन्म मरे का को दोष तरे बिन गुर बाद जीवन हो मरना बिन गुर शब्दे जन्म जरे खुशी खुआर पैरस भोगण होगट कर्म विकार करे नाम विसार लोभ मूल खोयो सिर थर मराए का दंड परे गुरमुख राम नाम गुण गाव है जा को हर पर नदर करे ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे ते जग में गुर गोविंद हरे हर सिमरहो गुर भजन सुमारहो संगत हर जन पाओ करे हर जन गुर प्रधान द्वारे नानक तीन जन की रेन हरे एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

जुगत सुजान स्वामी सदा राखण हार दुख दर्द कलेश बिन सह जिस बसे मन माहे मृत नरक स्थान बिखड़े बिखना पोहे ताहे रिद्ध सिद्ध नवनिध जा कहे अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुंजा वेद करे उचार तेमर स्वामी सुख सहज पुंच नहीं अंत पारा वार अनक प्राशित मिटे खिनम है हृदय जप भगवान पावना ते महापावन ओड़दान इसनान बल बुद्ध सुध प्राण सर्वस संतना की रास

तले उगाए बैसे हो, श्रम ना रहे हो शरीर, मांस अगर नए व्यापे किने उतरे हो तीर, चंदन अगर कपूर लेपन

जिन का पख करे तू स्वामी तिनकी ऊपर गल तुद आनी हे। हर हर नाम जिनी सदा त्याया तिनी गुर प्रसाद परम पद पाया। जिन घर सेव्या तिन सो पाया बिन सेवा पशो ताणी हे। तू सब में वरते हर जगन्नाथ सो हर जपे जिस गुरमस्तक हाथ। हर की शरण पया हर जापी जन नानक दा दसाणी हे। मारू सोर हे महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तला उपाय करी जन तरना। गगन रहाया हुमे चरणा अगन उपाय ईदन मैं बाधी हो प्रा राके भाई हे। जी जंत को रिजक संभाहे करण कारण समरथ आपाहे। खिर मैं थापो थापन हारा तोई तेरा सहाई हे। माद गर्भ में जिन प्रद पालिया सास ग्रह सोय संग समालिया। सदा सा जपगे सो प्रीतम वड्डी जिस वड्याई हे। सुल्तान खान करे खिन कीरे गरीब निवाज करे प्रामीरे। गर्भ निवारण सर्व सधारण किस कीमत कही न जाई हे। सो पतवंता सो धनवंता जिस मन वस्या हर भगवंता। माद पिता सुद बंध भाई जिन ए सृष्ट उपाई हे। प्रव्याय सरना पौनी करना साध संगत ने चोहे तरना। मन भज कर्म आराधे करता जिस नाही कदे सजाई हे। गुण निधान मन तन मैं रव्या जन्म मरण की जोन न पव्या। दुख विनाश किया सुख डेरा जहाँ तृप्त रहे आगाही हे। मीत हमारा सोई स्वामी थानत अनंत अंतर जामी। सेवर सिमर पूर्ण परमेश्वर चिंता गणत मिटाई हे। हर का नाम कोट लख बाहा हर से कीर्तन संग तन ताहा। ज्ञान खड़कर कृपा दीना दूत मारे कर ताई हे। हर का जाप जपो जप जपने जीत आभो वसो कर अपने।

आनंद मंगल हर चलत तुमासे गुण गावे अनखद तुन बाणी तय नानक दा चितारना आमन जाना सब चलत तुम्हारा कर कर देखे खेल अपारा आ उपाय उपामन हारा अपना की या पालना सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी सदा सदा जाई बलिहारी दुए कर जोड़ सिमरो दिन राती मेरे स्वामी अगम अपारना तुद बिन दूजे के सालाही एको एक जपी मन माही हुक्म बूझन पए निहाला ए भगता की कालना गुर उपदेश जप के मन साचा गुर उपदेश राम रंग राचा गुर उपदेश टुटे सा बंधन यो परम मोह पर जालना जय राखे सोई सुख थाना फे जे होए सोई फल माना बिन से बैर नाही को बैरी सब एको है पालना डर चूके बिन से अंधियारे प्रड पए प्रा पुरख निरारे आव छोड़ पए सरनाई जिसका साथ कालना ऐसा कोवड पागी आया आड़ पैर जिन खदम ते आया ते जन के संग तरे सब कोई तो परवार सुधारना ए बख्शीस खदम ते पावा आड़ पैर कर जोड़ ते आवा नाम जपी नाम सहज समावा नाम नानक मिले उचारना मारू मोहल्ला पंजवा सूर देखना फूल गवारा मिसन मुहारा चूड़ पसारा जग में कोई रहन न पाए नेचर एक नारायणा गुरपूरे की पौसरनाई मोसूसा परम मटाई एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना जिस नामे को तरसे बो देवा सगल पत जा की कर दे सेवा अनाथा नाथ दीन दुख पंजन तो गुरपूरे ते पायना होर द्वारा कोई न सूझे तिर पवन तावे ता किसु न बूझे सतगुर साओ भंडार नाम जिस यो रतन तसे ते पायना जाकी तूर करे पुनीता तुर नर देव न पावे मीता सत पुरख सतगुर परमेसर जे भेड़त पार परायना पार जात लोड़े मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे तृप्त संतोष सेवा गुरपूरे नाम कमाए रसायना गुर कै शब्द मरे पंच धातु पए पार ब्रह्म होवे निर्मला तू पार जा फेटे गुरपूरा ता पारस प्रसिद खायना कई बैकुंठ नाही लवे लागे मुक्त बपड़ी पी गया नी त्यागे एक अंकार स गुर ते पाई है हों बल बल गुर दरसायना गुर की सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई जिसनु लाए लए सो सेवक जिस बड़ पाग मथायना गुर की महिमा वेद न जाने तुष मात तुन सुन वखाने पार ब्रह्म अपरम पर सदगुर जिस सिमरत मन सीतलायना जाकी सोए सुनी मन जीवे हृदय वसे ता ठंडा थीवे गुरमुखों अलाय।

करो दया किरमायणा, निर्गुण को संग ले और लाए, कर कृपा मुहे टह ले लाए, पखा फेरो पीसो संत आगे, चरण तोय सुख पायना, बहुत द्वारे प्रम प्रम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरण आया, सदा सदा संते संग रख हो, यो नाम दान देवायना, पै कृपाल गुसाई मेरे, दर्शन पाया सतगुर पूरे, सुख सहज सदा आनंदा, नानक दास दसायना, मारू सोलहे महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सिमरे धरती अर आकाशा, सिमरे चंद सूरज गुण तासा, पौन पानी बैसंतर सिमरे, सिमरे सगल उपार जना, सिमरे खंड दीप सब लोवा, सिमरे पाताल पुरिया ससोवा, सिमरे खाणी सिमरे बाणी, सिमरे सगले हर जना, सिमरे ब्रह्मे विष्णु महेशा, सिमरे देवते कोड़ते तीसा, सिमरे जख दैंत सब सिमरे, अगणत न जाई जस गना, सिमरे पस पंखी सा पूता, सिमरे बाण पर्वत अवधूता, लता बली साग सब सिमरे, रव रया स्वामी सा मना, सिमरे थूल सूखम सब जनता, सिमरे सिर साधक हर मंता, गोबत प्रगट सिमरे प्र...

तिमरे जद जोश सा वरना सिमरे गुणी चित्र सा बेते सिमरे रैणी अर देना सिमरे घड़ी मूर्त पल निमखा तिमरे काल अकाल सोच सोचा तिमरे सुन सा तिर संयोगा अलख न लखिए एक खिना करन करामन गार सुवामी सगल कटा के अंतर जामी कर कृपा जिस भगती लाव जन्म पदार्थ सोजना जाके मन रूठा प्रव्यपना पूरे कर्म गुर का जप जपना सर्व निरंतर सुप्रा जाता बोर न जोनी परम रोना गुर का शब्द से मन जाके दुख दर्द पमता का पागे सुख सहज आनंद नाम रस आनंद वाणी सहे तुना सो तनवंता जिन प्रोत्याया सो पतवंता जिन साध संग पाया पार ब्रह्म जाके मन उठा सो पूर्व कर्मा नाशिरा जल थल मैल स्वामी सोई अवर न कही गए दूजा कोई गुर ज्ञान अंजन काट्यो प्रो सगला अवर न दिसे एक बिना ऊचे ते ऊंचा दरबारा तैन न जाई अंत न पारा गैर गंभीर अथा स्वामी अतुल न जाई क्या बिना तू करता तेरा सब किया तुझ बिन अवर न कोई बिया आद मध अंत प्रातु है सगल पसारा तुम तना जम दूत किस निकट न आवे साध संग हर कीर्तन गावे सगल मनोरथता के पूर्ण जो श्रवणी प्रभ का जस सुना तू सबना का सबको तेरा सच्चे साहेब गैर गंभीरा कहो नानक से जन उत्तम जो पावे स्वामी तुम मना मारू महला पंजवा प्रसमरथ सर्व सुख दाना सिमरो नाम हो मेहरबाना हर दाता जी जंत पेखारी जान बांछे जा चंगना मांगो जन तूर परम गद पावो जन्म जन्म की मैल मिटावो दीर्घ रोग मिटे घर औखद हर निर्मल रापे मंगना श्रावणी सुनो बिमल जा स्वामी एका ओट तजो बिख कामी निव निव पाए लगो दास तेरे कर सुकृत ना ही संगना रसना गुण गावे हर तेरे मिटे कुमाते अवगुण मेरे सेमर सेमर स्वामी मन जीवे पांच दूत ताज तंगना चरण कवन जा बोत चरिये संत संग मेरे सागर तरिये अर्चा बंधन हर संत निवासी बौड़ जोन ना नंगना दास दासन को कर लिहो गोपाला कृपा निधान दीन दयाला सखा सहाई पूर्ण परमेश्वर मिल कदे न हो भी पंगना मान तन अर्प करी अरागे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत्यागी हो मे हंतना जल त पूर्ण अंतर जामी खड़का रवे अशल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रवे असर मंगना जद कद पेखो प्रभ सुख सागर हर तोड़ भंडार ना ही रतनागर आगे अगा कशमित नहीं पाइये तो बूझे जिस किर पंगना जाती शीतल मन त ठंडा जन्म मरण की मिटवी डंजा कर गे काल लिगे प्रवे अपने हमें तार धिर टंगना एको एक रवैया सब ठाई जे बन दूजा कोई नाही आद मद अंत प्रवरव्या कृष्ण बुझी परमंगना गुर परमेश्वर गुर गोबिंद गुर कर्ता गुर सदभग संद गुर जप जाप जपत फल पाया ज्ञान दीपक संत संगना जो पेखा सो सबके स्वामी जो सुनना सो प्रभ की बानी जो कीनो सो तुम्हें करायो शरण सहाई संत है तना जातक जाते तुम्हें आराधे पद पावन पूर्ण प्रसाद एक को दान सर्व सो गुण निध आन मंगरन है किंचना काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बनी घर बाणी मन नाम जीठे रंगना सोल है कला संपूर्ण फलया अंत कला हुए ठाकुर चढ़या अंध विरोध हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोल हे महला पंजवा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद तू साहिब हो सेवक कीता जीव पिंड सब तेरा दीता करन करावन सब तू है नाही किस असाड़ा तुम्हे पठाए ता जग में आए जो तू पाणा से कर्म कमाए उते बाहर किशु

न कोए, पूछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोए। सतगुर साचा मन वसे साजन उतही ठाए, नानक मन त्रिवता सीए सिवती साचे नाए। महला तीजा आपे करनी कार आप, आपे करे रजाए आपे किस ही बख्श ले, आपे कार कमाए नानक चानन गुर मिले। दुख बिख जाली नाए पौड़ी, माया वेख ना पुल तू मनमुख मूर्खा। चलद्या नाल ना चलई सब झूठ दर्ब लखा, अग्ञानी अंध ना बूझई सिर ऊपर जम खड़ग कलखा। गुर प्रसादी उभरे

मांगिए सो दर सेवे हो ना कोए, ऐसा सदगुर लोड लहो जे जेवड़ अवर ना कोए, ते शरणाई छूटिए लेखा मंगे ना कोए, सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिरदे सच है तन मन पी सच्चा होए, नानक सच्चे हो मन्ने है।

विच होमे पाईया एक मंदर पंच चोर है नित करे बुरियाईया दस नारी एक पुरख कार दसे साध लोभाईया इन माया मोहनी मोईया नित फिरे परमाईया हठां दोवे कीतियो सेव सगत वरताईया सिव अगे सगति हारिया एवे घर पाईया एक विचों ही तुद रखिया जो सतसंग मिलाईया जल विचों बिंब उठा ले हो जल माहे समाईया डखणे महला पंजवा आगा कूतराग पिछा फेर ना मोडड़ा नानक सिज अवेहा वा।

जिन जान गुरमुख सेवया इस कर दीबान अपग हर कृपा ते सुख पाया गुर सतगुर चरणी लगे डखणे मोहल्ला पंजवां लोड़िंदो हब जाए सो मीरा मीरन सिर हठ मजाऊ सोतणी चौदो मुख अलाए मोहल्ला पंजवां माणकू मोय माओ डिणना तणी अपाह हियाओ मिंजा ठंडड़ा मुखों सच अलाए मोहल्ला।

ब्यास कहत गए सुख को पूछो जाई, कहे कबीर आरामे राम छूटो नाए त बूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है जौला मनो ना तरे विकार, जे घर बन संसर किया ते पूरे संसार, सार सु पाई गे रामा रंग रवो आत्मे राम।